0: उसके लिए न्याय दीजिए और IIT का जो बैकग्राउंड है वो चेक कीजिए। दलित बच्चों को क्यों, वही क्यों सुसाइड कर रहे हैं? आपका भी काम है, आप भी नागरिक है समाज के, यू आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल दिस पर्सन। आपके भी बच्चे जाते हैं, जब अच्छे प्रशासन में जाते हैं ना, वो सभी प्रशासन में ऐसा ही चलता है, लेकिन माँ बाप का काम क्या है, चलता है। हमने उसे मेंटली सपोर्ट किया कि तुम्हारा फ्यूचर बहुत अच्छा है बेटा, थोड़ा सहन कर। वो हमारी गलती हो गई, अगर हम उस दिन उसको लेके गए थे ना, मेरा बच्चा आज जिंदा होता।
1: जो भी किया, लाइक कॉपी करते हुए पकड़ा गया, फिर सुसाइड कर लिया। कॉपी करना इज अ डिफरेंट थिंग, बट सुसाइड करना इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग। तो उसके लिए दुख तो है, सब बच्चों के अंदर सिंपैथी है, साहिल होनी भी चाहिए। पर फिर उसके बाद जो प्रोटेस्ट हो रहा है, उसमें डिमांड्स जो बच्चे रख रहे हैं, वो डिमांड्स भी काफ़ी हद तक सही हैं, बहुत सारी सही डिमांड्स हैं। पर फिर जो केस लगाया गया हेडोला सर के ऊपर, वो कंप्लीटली बेसलेस है मेरे हिसाब से। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन IIT बॉम्बे में नहीं होता है, जितना मैंने जाना है अभी तक। मेरे साथ भी नहीं हुआ, मेरे किसी दोस्त के साथ भी कभी नहीं हुआ। मैं भी पहले प्रोटेस्ट में आया था, पहले दिन जब प्रोटेस्ट हो रहा था, इवेंचुअली मेरे को पता लगा ये इतना सही नहीं है इनका पॉइंट। ये लाइक SC ST एक्ट जो लगा रहे हैं बिल्कुल सही नहीं है, उसका गलत यूज करा जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के एक्ट का हमारे।
2: मेनली आपको पता है मिड सेमेस्टर एग्जाम चल रहा था, ही वॉज कॉट कॉपी करते हुए पकड़ा गया था, मोबाइल अंदर लेकर के चला गया था। सो जो प्रोफेसर ने कुछ बोला होगा उसके अकॉर्डिंग ही डिड सुसाइड। यहाँ पर IIT बॉम्बे किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है, मतलब जो भी प्रोफेसर्स हैं, अगर आपको मार्क्स भी, अगर एग्जाम में मार्क्स दिए जाते हैं वो रिलेटिव होते हैं, जिसका जो परफॉर्मेंस होता है उसके अकॉर्डिंग होता है, अंदर किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है।
3: सेंसस नाउ इट वाज बीन ट्राइड टू मेक, वी ऑल एग्री ऑन वन थिंग कि चेंजेस नीड टू बी ब्रॉट टू हाउ स्टूडेंट वेलफेयर इज डन, एंड स्टूडेंट वेलनेस सेल में साइकियाट्रिस्ट और होने चाहिए, थिंग्स लाइक दैट। स्टूडेंट्स वॉइस शुड बी हर्ड व्हेन डिसीजंस आर मेड, बट आई थिंक स्टूडेंट्स डिसएग्री ऑन द ट्रीटमेंट जो प्रोफेसर दुल्ला को किया जा रहा है, एंड द कास्ट एंगल व्हिच इज बीइंग ब्रॉट इन, व्हिच इज नॉट द केस एट ऑल।
4: Or that recent breaking news coming in this morning, let's take you through it. LSR has now shifted classes online after minor's rape. That's right, after 17-year-old was allegedly raped in Asa Kunj Park, LSR, the Lady Shri Ram College, has now cancelled regular classes and has issued a statement saying safety of students top priority. So we're seeing a reaction coming in there from the college that has now in fact shifted classes online. My colleague Ishika is with us on the broadcast early this morning to bring us the updates. Ishika, if you understand this correctly, then LSR has shifted the classes to an online mode. Walk us through the details. What exactly has prompted this move?
5: Well, as you rightly mentioned, right now, in fact, we are seeing that Lady Shri Ram College, in fact, has ordered that the offline classes for today will be cancelled and all the classes will happen on online mode. And this, in fact, has happened after, in fact, an alleged gang rape case was in fact reported from Kalkaji, which is just like few meters away from this Pegni College. So certainly after that, the LSR college administration has gone on record to say that this step has been taken keeping in mind the safety of the female students in mind. But certainly the big question is that is it the right step, canceling the offline classes and making it online, will it actually be enough for the safety of women? On the other hand, if we talk about the Lieutenant Governor of Delhi has already ordered for the Pink Force, that means more women patrolling the so-called vulnerable sections, be it in fact metro, be it schools, be it university. But the big question remains that is it too little, too late, especially when we are seeing that there were 4 cases of sexual assault in the last 10 days. Over to you.
4: Absolutely, Ishika. This, of course, raises larger questions of whether this will actually make a difference to the students or not. But thank you so much for joining us early this morning and bringing us those important updates. All right, now moving on to more updates coming in. Well, a war of words is playing out between the Congress Party and the Samajwadi Party in Uttar Pradesh. Samajwadi Party Member Parliament Ikra Hassan has now stoked a row when she said that only Akhilesh Yadav can defeat the BJP in the state and that the Congress Party cannot do much on its own. Hitting back at her, the Congress Party Member Parliament Imran Masood pointed out her TMC's overconfidence before the West Bengal Assembly elections and asked the Samajwadi Party to take lessons from their downfall. Now, Uttar Pradesh Congress in charge, Rajendra Pal Gautam,

0: Hello and welcome. My name is Reed Kaur Sahani. You're watching Eddie TV. Well, you've got an action-packed show lined up for you this morning, but let's first take you through the headlines of the hour. A student's death, allegations of caste discrimination, and now a deepening campus showdown at IIT Bombay. Sahil's family is demanding the immediate arrest of Professor Dhula, alleging caste-based harassment. Samajwadi Party member Parliament Ikra Hasan has talked to Rao, saying only Akhilesh Yadav can defeat the BJP. Hitting back at her, Congress member Parliament Imran Masood pointed out TMC's overconfidence before the Bengal polls. Fishermen's hamlets near, in fact, Tamil Nadu have announced a protest on September 29th against the proposed Secretariat Assembly Complex, citing concerns over its impact on fishing communities and even livelihoods. The Congress-led UDF government has ordered a police inquiry into the Enforcement Directorate's report, seeking action against former Chief Minister Pinarayi Vijayan and his daughter Veena and her husband PM Mohammed Riaz. All right, tracking the top story of the hour, well, a student's death, allegations of caste discrimination, and now a deepening campus showdown at IIT Bombay. NDTV has even accessed details of the initial crime branch probe. Sources say there is so far no concrete evidence of a Betman to suicide, while no eyewitness has confirmed the allegations of casteist remarks. Now, the probe is also examining CCTV footage, which sources say shows Sahil engaged in cheating and Professor Dhula asking him to step out of the class. But Sahil's family is demanding the immediate arrest of Professor Dhula, alleging caste-based harassment. Sahil's father has also accused the institution of destroying crucial evidence in the case. Meanwhile, politics has also broken out on the caste angle, with Congress member Parliament KC Venugopal alleging that the government withheld caste-wise data on student suicides at IITs.
1: उसको जातिवाचक स्वीकार कर रहे थे ऊपर के जाति का है ये करे वाला है सब उसको टॉर्चर करके और उसका उसको उसकी आत्महत्या नहीं है वो हुशार तो हुशार विद्यार्थी होता हां आप उसका ऑल इंडिया रैंक देखिए हैं उसके वो ये कुछ भी गलत आरोप करेंगे वो बोलेंगे कि उधर का चीटिंग करके वो एडवांस क्रैक करके आया है उसको अरेस्ट करिए यही मेरी विनती है
2: मेरे बेटे को न्याय दीजिए उस पर जो अत्याचार हुआ है उसके लिए न्याय दीजिए और आईआईटी का जो बैकग्राउंड है वो चेक कीजिए दलित बच्चों को क्यों वही क्यों सुसाइड कर रहे हैं आपका भी काम है आप भी नागरिक है समाज के You are also responsible this person. आपके भी बच्चे जाते हैं जब अच्छे प्रशासन में जाते हैं ना वो सभी प्रशासन में ऐसा ही चलता है लेकिन माँ बाप का काम क्या है चलता है हमने उसे मेंटली सपोर्ट किया कि तुम्हारा फ्यूचर बहुत अच्छा है बेटा थोड़ा सहन कर वो हमारी गलती हो गई अगर हम उस दिन उसको लेके गए थे ना मेरा बच्चा आज जिंदा होता
3: जो भी किया लाइक कॉपी करते हुए पकड़ा गया फिर सुसाइड कर लिया कॉपी करना इज अ डिफरेंट थिंग बट सुसाइड करना इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग तो उसके लिए दुख तो है सब बच्चों के अंदर सिंपैथी है साहिल की होनी भी चाहिए पर फिर उसके बाद जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें डिमांड्स जो बच्चे रख रहे हैं वो डिमांड्स भी काफ़ी हद तक सही हैं बहुत सारी सही डिमांड्स हैं पर फिर जो केस लगाया गया हेडुल्ला सर के ऊपर वो कंप्लीटली बेसलेस है मेरे हिसाब से कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन आईआईटी बॉम्बे में नहीं होता है जितना मैंने जाना है अभी तक मेरे साथ भी नहीं हुआ मेरे किसी दोस्त के साथ भी कभी नहीं हुआ मैं भी पहले प्रोटेस्ट में आया था पहले दिन जब प्रोटेस्ट हो रहा था इवेंचुअली मेरे को पता लगा ये इतना सही नहीं है इनका पॉइंट ये लाइक SC ST एक्ट जो लगा रहे हैं बिल्कुल सही नहीं है उसका गलत यूज करा जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के एक्ट का हमारे
4: मेनली आपको पता है मिड सेमेस्टर एग्जाम चल रहा था ही वाज कॉट कॉपी करते हुए पकड़ा गया था मोबाइल अंदर लेकर के चला गया था सो जो प्रोफेसर ने कुछ बोला होगा उसके अकॉर्डिंग ही डिड सुसाइड यहाँ पर IIT बॉम्बे किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है मतलब जो भी प्रोफेसर्स हैं अगर आपको मार्क्स भी अगर एग्जाम में मार्क्स दिए जाते हैं वो रिलेटिव होते हैं जिसका जो परफॉर्मेंस होता है उसके अकॉर्डिंग होता है अंदर किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है
5: सेंसस नाउ इट वाज बीन ट्राइड टू मेक वी ऑल अग्री ऑन वन थिंग कि चेंजेस नीड टू बी ब्रॉट टू हाउ स्टूडेंट वेलफेयर इज डन एंड स्टूडेंट वेलनेस सेल में साइकियाट्रिस्ट और होने चाहिए थिंग्स लाइक दैट स्टूडेंट्स वॉइस शुड बी हर्ड व्हेन डिसीजंस आर मेड बट आई थिंक स्टूडेंट्स डिसएग्री ऑन द ट्रीटमेंट जो प्रोफेसर दुल्ला को किया जा रहा है एंड द कास्ट एंगल व्हिच इज बीइंग ब्रॉट इन व्हिच इज नॉट द केस एट ऑल
0: All right, some breaking news coming in this morning. Let's take you through it. LSR has now shifted classes online after minors rape. That's right, after 17-year-old was allegedly raped in Asa Kunj Park, LSR, the Lady Sri Ram College, has now cancelled regular classes and has issued a statement saying safety of students top priority. So we're seeing a reaction coming in there from the college that has now in fact shifted classes online. My colleague Ishika is with us on the broadcast early this morning to bring us the updates. Ishika, if you understand this correctly, then LSR has shifted the classes to an online mode. Walk us through the details. What exactly has prompted this move?
6: Well, as you rightly mentioned, right now, in fact, we are seeing that Lady Sri Ram College, in fact, has ordered that the offline classes for today will be cancelled and all the classes will happen on online mode. And this, in fact, has happened after, in fact, an alleged gang rape case was, in fact, reported from Kalkaji, which is just like few meters away from this present college. So certainly, after that, the LSR college administration has gone on record to say that this step has been taken, keeping in mind the safety of the female students in mind. But certainly, the big question is that is it the right step, canceling the offline classes and making it online, will it actually be enough for the safety of women? On the other hand, if we talk about the Lieutenant Governor of Delhi has already ordered for the Pink Force, that means more women patrolling the so-called vulnerable sections, be it in fact metro, be it schools, be it university. But the big question remains that is it too little, too late, especially when we are seeing that there were 4 cases of sexual assault in the last 10 days. Over to you.
0: Absolutely, Ishika. This, of course, raises larger questions of whether this will actually make a difference to the students or not. But thank you so much for joining us early this morning and bringing us those important updates. All right, now moving on to more updates coming in. Well, a war of words is playing out between the Congress Party and the Samajwadi Party in Uttar Pradesh. Samajwadi Party Member Parliament Ikra Hassan has now stoked a row when she said that only Akhilesh Yadav can defeat the BJP in the state and that the Congress Party cannot do

0: refused to do so, and then commando action took place, and Arvind Singh, the accused, he fired on the cops, and the cops then done the counter fire, and in the counter fire, Arvind died. And during this, Arvind also fired on his son, who died in the hospital. So four people murdered and one encountered in Azamgarh. So the investigation is going on, and the neighbors and as well as family said that he was mentally disturbed because of murder of his brother 2 years back. But still, the police probe is going on, and the legal formalities will also...
1: We'll, of course, continue to track the finer details of this probe with you. Absolutely shocking and very unfortunate details coming in from UP's Azamgarh. All right, meanwhile, a war of words is playing out between the Congress and the Samajwadi Party in Uttar Pradesh. SPMP Ikra Hassan spoke to Rao when she said that only Akhilesh Yadav can defeat the BJP in the state and that the Congress can't do much on its own. Hitting back at her, Congress MP Imran Masood pointed out TMC's overconfidence before the Bengal elections and asked the Samajwadi Party to take lessons from the TMC's downfall. Meanwhile, UP Congress in charge Rajendra Pal Gautam also weighed in on the alliance buzz. He said that the Congress is prepared to contest all 403 seats alone if it has to, but insisted the relationship with the Samajwadi Party remains warm. Pacifying all sides though, SP Shivpal Yadav, he said that the call rests only with the two party chiefs. Seat sharing talks, meanwhile, they are expected to begin in October.
2: मुझे लगता है कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई व्यक्ति ऐसा है जो भाजपा को हरा सकता है तो वो सिर्फ अखिलेश यादव जी है। कांग्रेस अपने दम पर कुछ कर नहीं पाएगी। गठबंधन रहा तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं रहा तो ये उनके लिए नुकसान है, हमारे लिए नहीं।
3: गठबंधन को लेकर के आप बयान देते रहते हैं, आपके एक बयान पर पलटवार करते हुए इकरा हसन समाजवादी पार्टी की सांसद, उन्होंने कहा कि कांग्रेस अकेले यूपी में कुछ नहीं कर सकती, गठबंधन रहा तो ठीक, नहीं रहा तो कांग्रेस को नुकसान होगा, क्या आप कहना चाहते हैं?
4: देखिए, मैं 2022 के नतीजे कहना चाहता हूं कि देख लें, उसके बाद पता चल जाएगा। 2024 के नतीजे देख लें तो पता चल जाएगा कांग्रेस कहाँ ज़रूरी है, ये आपको समझ में आ जाएगा। कांग्रेस थी तो 37 सीटें आई, कांग्रेस नहीं थी तो 112 के ऊपर रुक गए, तो ये बात साफ है।
3: लेकिन ये बताइए, नौबत क्यों आ रही है कि क्या आप लोगों में पार्टियों के बीच में बातचीत नहीं हो रही?
4: नहीं नहीं, करनी चाहिए। देखिए, हम उसका पार्ट नहीं है। आज आप देख रहे हैं कि कितना उत्साह लोगों के अंदर है, तो ये गलत फहमी कोई ना पाल के रखे। आज पूरे देश के अंदर माहौल राहुल गांधी जी ने बना दिया है, और ये राहुल गांधी के मतवाले हैं, और राहुल गांधी की आवाज़ के ऊपर ही सब काम मजबूती के साथ होगा। तो
1: Well, on that note, we're slipping into a very quick commercial break. But as always, the latest updates continue right here on the NDTV network. We get you the latest on the IIT Bombay Sahil Bakore case and also on the Delhi rape horror.

0: the investigation is currently underway. ACP Bansol, who's heading up this investigation, he too is ensuring that everything right from the statements that will be recorded for the forensic evidence and further will be in checks when it comes to the investigation's accuracy. The parents of Sahil Wakuri yesterday, while addressing the media, said that Sahil was a bright student and they're expecting this to be a fair investigation as far as the crime branch is concerned. Over to you.
1: As always, Sujatha, thanks so much for joining us with the lowdown. While in an emotional conversation with NDTV, Sahil Wakuri's father, Ravindra Wakuri, said his son had told him about alleged caste-based harassment just days before his death. He explains why the family did not file a complaint at the time, discusses the FIR registered under the SCST Act and abetment provisions as well, and questions why arrests have not yet been made. Listen into that conversation.
2: हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र जी. सबसे पहले आपकी क्या मांग है, आपकी सबसे पहली क्या मांग है? अभी
3: मेरा बेटा आईआईटी ओवी में सेकंड ईयर में एनर्जी इंजीनियर करके पढ़ाई कर रहा था. उनका उनको आत्महत्या हुई करके हमारे को मैसेज आया, फोन आया. उसके वो देखने के बाद हमने उससे 13 तारीख से मेरी बात हुई थी. वो बोल रहा है कि यहाँ जातिवाद के पे टॉर्चर हो रहा. मैंने उसको समझाया, बेटा इतने बड़े इसमें कुछ हो सकता है, विरोधक रहते थोड़ा शांत हो जा करके मैंने उसको समझाया. आगे की जिंदगी आपकी अच्छी है, ऐसे करके उसको समझाया. लेकिन मेरे को पता चला कि उसकी आत्महत्या हुई है, तो करके हमने उसके जो जिनके उन्होंने मेरे को नाम बताए थे उनके तरफ मैंने एट्रोसिटी एक्ट का मामला दर्ज कराया और आत्महत्या को जिन्होंने उन्होंने प्रवृत्त कराया तो वो कलम से उन पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है. तो अब एफआईआर दर्ज हो चुकी है तो इसके बावजूद क्राइम ब्रांच को चालू है तो उसके बाद भी वो उनको पूरा जो सबूत है ना, सबूत सभी है हमारे पास, तो उनको अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे मैडम? मेरी मांग है अरेस्ट करो उनको.
4: जी आप कह रहे हैं कि अब सबूत है, बट कॉलेज ने भी कहा है कि SCST सेल जो है वहां पे कोई साहिल ने कोई कंप्लेन नहीं की वो, और जो क्राइम ब्रांच पुलिस भी ये कह रही है कि कोई एविडेंस कोई सबूत नहीं है कि कोई कास्ट पे डिस्क्रिमिनेशन हुआ है.
3: प्रोफेसर डोरा ने मैडम जब केदारे सर वो बच्चों को मिलने आए थे, उनके वो मांगना जो उनके जो मांग डिमांड थी, डिमांड का लेटर लेके आए थे, तब उनके साथ जो लड़की थी उन्होंने सीधा सीधा वो क्लिप में बताया है कि यहाँ जातिवाद चल रहा था, यहाँ जातिवाद, तो वो सुन रहे थे. आप वो फुटेज देखिए, आपको पता चलेगा कि जातिवाद वो जब उतने आरोप हो रहे थे तो वो कुछ नहीं कर रही थी केदारे सर, कुछ नहीं कर रहे थे, तो उनको उनको ये है कि मालूम है
1: Well, amid ongoing student protests seeking the suspension of Professor Dula following the death by suicide of 20-year-old student Sahil Wakuri, several faculty members from IITs have publicly expressed support for the professor and rejected allegations of caste-based discrimination at IITs, including IIT Bombay, IITs across India, especially Delhi and Madras too. Now, you know, IITs across our country face a problem of vacant faculty posts. But is the problem more acute on seats reserved for SCST and OBCs? Well, Padmaja Joshi takes us through what the data reveals. Listen in.
5: Let's tell you what is the status of the recruitment of professors across communities at all the IITs. And this is data that has been taken from 23 IITs across India. There are 12,498 total posts across these 23 IITs. 4,804 of them are vacant, which means it is an endemic problem at the IITs. Having posts vacant and those posts not being filled up is a huge problem. 38.4% overall posts in the IITs across India remain vacant. And when we look at a caste-wise breakup, yes, it's a fact that 261 of these posts are those which should be filled up.

0: Welcome back. Let's get you the latest as far as the probe that has widened in the suicide case of Sahil in IIT Bombay. The Mumbai Crime Branch has examined the phones, and this is the phone records of the parents of Sahil as well as Sahil's phone as well. And now that they are going to be recording statements of the parents and the students, investigators are also likely to record statements of the professors at the university. This is the IIT Bombay University. Meanwhile, as per students, the IIT Bombay management has sent the professor Dula on leave amid this probe. IIT Bombay management has constituted a 10-member panel to investigate the entire matter. NDTV has accessed details of the initial crime branch probe. Sources are saying that there is so far no concrete evidence of abatement to suicide. As per sources, CCTV shows that Sahil was engaged in cheating, and that was established through CCTV footage, and the professor asked him to step out of the class. But Sahil's family is demanding immediate arrest of the professor, alleging caste-based harassment that went on for a while.
1: उसको जातिवाचक स्वीकार कर रहे थे, ऊपर के जाति का है, ये करे वाला है, सब उसको टॉर्चर करके और उसका उसको उसकी आत्महत्या नहीं है, वो हुशियार तो हुशियार विद्यार्थी होता, हाँ, आप उसका ऑल इंडिया रैंक देखिए, हाँ, उसके वो ये कुछ भी गलत आरोप करेंगे, वो बोलेंगे कि उधर का चीटिंग करके वो एडवांस क्रैक करके आया है, उसको अरेस्ट करिए, यही मेरी विनती है।
2: मेरे बेटे को न्याय दीजिए, उस पर जो अत्याचार हुआ है उसके लिए न्याय दीजिए, और IIT का जो बैकग्राउंड है वो चेक कीजिए, दलित बच्चों को क्यों, वही क्यों सुसाइड कर रहे हैं? आपका भी काम है, आप भी नागरिक है समाज के, यू आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल दिस पर, आपके भी बच्चे जाते हैं। जब अच्छे प्रशासन में जाते हैं ना, वो सभी प्रशासन में ऐसा ही चलता है, लेकिन माँ बाप का काम क्या है, चलता है। हमने उसे मेंटली सपोर्ट किया, हाँ, कि तुम्हारा फ्यूचर बहुत अच्छा है बेटा, थोड़ा सहन कर, वो हमारी गलती हो गई, अगर हम उस दिन उसको लेके गए थे ना, मेरा बच्चा आज जिंदा होता।
3: कॉपी किया, लाइक कॉपी करते हुए पकड़ा गया, फिर सुसाइड कर लिया। कॉपी करना इज अ डिफरेंट थिंग, बट सुसाइड करना इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग, तो उसके लिए दुख तो है, सब बच्चों के अंदर सिंपैथी है साहिल की, होनी भी चाहिए। पर फिर उसके बाद जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें डिमांड्स जो बच्चे रख रहे हैं वो डिमांड्स भी काफ़ी हद तक सही हैं, बहुत सारी सही डिमांड्स हैं, पर फिर जो केस लगाया गया है डोला सर के ऊपर वो कंप्लीटली बेसलेस है मेरे हिसाब से। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन IIT Bombay में नहीं होता है, जितना मैंने जाना है अभी तक, मेरे साथ भी नहीं हुआ, मेरे किसी दोस्त के साथ भी कभी नहीं हुआ। मैं भी पहले प्रोटेस्ट में आया था पहले दिन, जब

0: स्टूडेंट्स हो रहा था। इवेंचुअली मेरे पता लगा ये इतना सही नहीं है इनका पॉइंट, ये लाइक SC ST एक्ट जो लगा रहे हैं बिल्कुल सही नहीं है, उसका गलत यूज करा जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के एक्ट का हमारे।
1: मेनली आपको पता है मिड सेमेस्टर एग्जाम चल रहा था, ही वॉज कॉट कॉपी करते हुए पकड़ा गया था, मोबाइल अंदर लेकर के चला गया था। सो जो प्रोफेसर ने कुछ बोला होगा उसके अकॉर्डिंग ही डिड सुसाइड। यहाँ पर IIT बॉम्बे किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है, मतलब जो भी प्रोफेसर्स हैं, अगर आपको मार्क्स भी अगर एग्जाम में मार्क्स दिए जाते हैं वो रिलेटिव होते हैं, जिसका जो परफॉर्मेंस होता है उसके अकॉर्डिंग होता है, अंदर किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है।
2: सेंसस नाउ इट वाज बीन ट्राइड टू मेक, वी ऑल एग्री ऑन वन थिंग कि चेंजेस नीड टू बी ब्रॉट टू हाउ स्टूडेंट वेलफेयर इज डन एंड स्टूडेंट वेलनेस सेल में साइकियाट्रिस्ट और होने चाहिए, थिंग्स लाइक दैट, स्टूडेंट्स वॉइस शुड बी हर्ड व्हेन डिसीजंस आर मेड। बट आई थिंक स्टूडेंट्स डिसएग्री ऑन द ट्रीटमेंट जो प्रोफेसर दुल्ला को किया जा रहा है एंड द कास्ट एंगल व्हिच इज बीइंग ब्रॉट इन व्हिच इज नॉट द केस एट ऑल।
3: That is Swishra Axon, get you the latest from the National Capital, and it's Lady Shriram College, LSR, that has shifted classes online following the alleged rape of a 17-year-old girl at a nearby Asta Kunj Park. The college has cancelled regular classes since Tuesday and moving towards online classes, citing student safety as its top priority. This comes after a minor girl was allegedly raped by 3 men inside the park near the Kalkaji Mandir on Monday evening. The college is situated just about 2 kilometers from that spot, and now the opposition leaders are slamming the government of Rekha Gupta over this issue. The Congress has said that Delhi government has failed to protect its women. Meanwhile, the Aam Aadmi Party has hit out at Rekha Gupta and said that the crime rates are peaking when it comes to the national capital. Let's listen in to what the Aam Aadmi Party said and what Abhishek Dutt has said of the Congress Party.
4: It is very, very sad that the people of Delhi losing faith in the policing system. Lady Shriram College, which is one of the most prestigious and old college, which sets the narrative for the country, not only Delhi. When their principal comes out and says that, you know, we want to do online classes, it is a point of concern for me. Imagine what these girls who are coming in Delhi, first they see PGs being collapsed, then MCD comes into action after the disaster.
5: Right.
4: Then these girls have asked to evacuate their hostels. The PGs are now rape of such instance where the people have the audacity to say that we are cops. The same thing happened in Jantar Mantar, if you remember those images. Private people posed themselves as cops. So where is the policing system? And I saw the statement by the LG where he talks about pink policing.
5: Right.
4: I want to ask Mr. LG, you'll be surprised to know thousands of Delhi police personnel are posted as private as security guards to politicians. What is more important today?
6: दिल्ली के हालात बस से बदतर होते जा रहे हैं और हम लगातार इस बात को कह रहे हैं कि दिल्ली में अब लॉ एंड ऑर्डर नहीं बचा है और अब तो स्थिति ये हो गई है कि लगातार रोज आप अखबार देखेंगे, टीवी देखेंगे तो छोटे छोटे बच्चों से बलात्कार हो रहा है, पार्क में बलात्कार हो रहा है, रोड पे बलात्कार हो रहा है। आप सोचो देश की राजधानी के क्या हालात बना दिए गए हैं और हम चुप बैठे हुए हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री महिला होने के बावजूद भी चुप बैठी हुई है। ये सिचुएशन है, 4 इंजन की सरकार ने दिल्ली की हालत ने बदतर बना दिए कि कॉलेज को कहना पड़ रहा है कि आप ऑनलाइन क्लासेस कर लीजिए। दिल्ली का इतना प्रतिष्ठित कॉलेज यूनिवर्सिटी का, उसको कहना पड़ रहा है ऑनलाइन क्लास, क्यों? क्योंकि आज बच्चियां रोड पे नहीं निकल सकती हैं, बच्चियां घर से बाहर नहीं जा सकती हैं। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि दिल्ली की सरकार जो निकम्मी और निठारा सरकार है वो बच्चियों को ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ाएगी और अब वो रोड पे नहीं निकल पाएंगी। तो आप सोचो ये देश की राजधानी में हो रहा है। अगर मैं आप रेप की बात करूं तो पिछले 1 महीने के अंदर दिल्ली में 10 से 15 से ज्यादा रेप हो चुके हैं, रोज रेप की घटनाएं हो रही हैं।
3: Let's get you the latest from poll bound state of Uttar Pradesh, where elections are coming up early next year. Now we have the Uttar Pradesh minister and BJP's ally OP Rajbhar.

0: रहा तो ठीक, नहीं रहा तो कांग्रेस को नुकसान होगा, क्या आप कहना चाहते हैं?
1: देखिए, मैं 2022 के नतीजे कहना चाहता हूं कि देख लें, उसके बाद पता चल जाएगा। 2024 के नतीजे देख लें तो पता चल जाएगा कांग्रेस कहां ज़रूरी है, ये आपको समझ में आ जाएगा। कांग्रेस थी तो 37 सीटें आई, कांग्रेस नहीं थी तो 112 के ऊपर रुक गए, तो ये बात साफ है।
0: लेकिन ये बताइए, नौबत क्यों आ रही है कि क्या आप लोगों में पार्टियों के बीच में बातचीत नहीं हो रही?
1: नहीं नहीं, करनी चाहिए। देखिए, हम उसका पार्ट नहीं है। आज आप देख रहे हैं कि कितना उत्साह लोगों के अंदर है, तो ये गलत फहमी कोई ना पाल के रखे। आज पूरे देश के अंदर माहौल राहुल गांधी जी ने बना दिया है, और ये राहुल गांधी के मतवाले हैं, और राहुल गांधी की आवाज़ के ऊपर ही सब काम मजबूती के साथ होगा। तो राहुल जी का हाथ मजबूती से थाम लीजिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, मजबूती से थाम लीजिए, वरना बंगाल बनने के लिए तैयार रहिए।
0: आपके सहयोगी समाजवादी पार्टी के सांसद की तरफ से बयान आया एक राशन का कि गठबंधन हो तो ठीक है, नहीं होगा तो कांग्रेस का ही नुकसान होगा, अकेले कांग्रेस कुछ नहीं कर पाएगी।
2: ये अखिलेश भी बोल दें, अखिलेश जी बोल दें ये बात। राहुल जी ने तो शुरू से कहा है इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की जिम्मेदारी हमारी है। हमने तो कभी नहीं कहा कि हम अकेले लड़ेंगे। आपको भी हम कितने बार इंटरव्यू दे चुके हैं, हम बार बार कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की, ताकत देने की, और चूंकि बड़ा दल होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है। तो हम जो 403 की 403 सीट पर हमारी तैयारी चल रही है, और गठबंधन बहुत मजबूत होगा, और हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार को बेदखल करेंगे, और एक न्यायवादी, समतावादी, संविधान मानने वाली गठबंधन सरकार बनाएगी।
0: इकरा ने ये बयान इसलिए दिया क्योंकि आपके सांसद इमरान मसूद ने कहा कि अखिलेश जी की सक्रियता से कोई फर्क नहीं पड़ता, गठबंधन जब होगा तभी, वरना बंगाल वाला हाल हो जाएगा।
2: नहीं नहीं, उनका बयान सुन लीजिए, उन्होंने ये नहीं कहा सक्रियता से फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने ये कहा है कि गठबंधन जो हो वो सीटें जल्दी से जल्दी बातचीत होकर तय हो जाए।
0: तैयारी कह रहे हैं आप 403 की कर रहे हैं, वो ठीक है, मांग कितनी सीटें रहे? मैंने ऐसा तो नहीं कि ज्यादा मांग रहे हैं इसलिए बात शुरू नहीं हो रही।
2: मैंने शुरू से कहा है हिस्सेदारी और सम्मान बराबर का, लेकिन मैंने साथ में एक लाइन और भी बोली है, हम लोग फ्लेक्सिबल हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वाली जहां तक बात है वो, उसमें कोई प्रॉब्लम
0: नहीं। सपा के कुछ नेता ये दावा करते हैं कि कांग्रेस को 60-70 से ज्यादा हम देने के मूड में नहीं है।
2: भैया, ये पता नहीं आप लोग चला रहे हो, हमसे तो ये बात आज तक किसी ने की नहीं।
3: Switching tracks now from Uttar Pradesh to Karnataka. The fund crunch is what the BJP is now highlighting in the state. They have staged a protest, a dharna against D.K. Shivkumar, the new chief minister of the state, with the BJP mocking D.K. Shivkumar, protesting with

0: The latest story is that the Election Commission is facing questions over its functioning. As per reports, there are two election commissioners, Supir Singh Sandhu and Vivek Joshi, raising formal objections at least 14 times, and this has taken place over the last 10 months alone. The objections have covered changes to Form 6 and centralization of voter data software modules that were developed without their approval, without their consent, and restrictions on electoral registration offices. The Election Commission has now responded to the questions. In fact, the ECI, according to sources, is saying that all decisions, including SIR, have been unanimous and with approval of both the election commissioners and the chief election commissioner. Now, the report has triggered sharp political reactions, with the Congress there alleging that there's an invisible hand that is running the poll body. That is what Manish Tiwari has said. Then we also have Akhilesh Yadav, the chief of the Samajwadi Party, who has sought intervention of the Supreme Court in the matter.
1: पहले कांग्रेस ने सबूत के साथ हरियाणा इलेक्शन में हुई गड़बड़ियों का और इशारा किया, फिर महाराष्ट्र और उसके बाद बंगाल में बची खुची कसर भी पूरी तरह, फिर जनता ने आवाज उठाई, दूसरी पार्टियों ने भी आवाज उठाई, नेताओं ने आवाज उठाई, जनता ने आवाज उठाई, और मुझे खुशी, मैं बधाई देता हूं कि आज जो तथ्य उभर का सामने आ रहे हैं, तीन सदस्यीय चुनाव आयोग के दो मेंबर अपने चीफ, जिसके बारे में हम कह रहे थे कंप्रोमाइज, भाजपा के हाथों पूरी तरीके से समर्पित है, चुनाव जिताओ, जैसे भी हो सके जिताओ, जितनी बेईमानियां करनी पड़े करो।
2: तो आज ये तय हो गया है कि मेजॉरिटी ज्ञानेश कुमार के साथ नहीं थी। ज्ञानेश कुमार अपनी मनमर्जी से फैसले करते थे किस तरह इलेक्शन चलाना है, क्या ईआरओ को करना है, कौन सा फॉर्म फाइल करना है, ये तय करते थे ज्ञानेश कुमार। जोशी साहब और संधु साहब जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, कई बार उन्होंने विरोध किया कि जो आप कर रहे हो ज्ञानेश कुमार जी, और लगभग मेरे ख्याल 40 बार 14 बार 10 महीने में विरोध किया कि आप ये क्या कर रहे हो, जो कर रहे हो आप वो संवैधानिक नहीं है, कानून के मुताबिक नहीं है। ये देश अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर चुनाव का फायदा क्या है? होना तो ये चाहिए कि ज्ञानेश कुमार को अभी सस्पेंड करना चाहिए, अभी सस्पेंड करना चाहिए।
3: ये ज्ञानेश कुमार को भी बर्खास्त करके उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए, ये देश के अपराधी है। अगर ये मोदी जी नहीं कर रहे तो मैं राष्ट्रपति से आह्वान करूंगा

0: वो संवैधानिक हेड है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, तीन आर्मी की चीफ है, तो ज्ञानेश कुमार को अब आपके अधिकार में बर्खास्त करो और उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करो। मैं आगे जाकर ये कहूंगा, राष्ट्रपति नहीं करते तो अगर हमारे आर्मी के चीफ में लोकतंत्र और देश के बारे में स्वाभिमान का और अभिमान का कोई जज्बा है तो देश को हुकुमशाहों से बचाने के लिए, ऐसे लोगों को, लोगों से बचाने के लिए आगे आना चाहिए।
1: अच्छा, जब पूर्वांचल बनेगा तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी बनेगा, फिर दक्षिण भी, दक्षिण का भी बनेगा, रोहेलखंड बनेगा, फिर रोहेलखंड बनेगा, रोहेलखंड बनेगा। पहले तो ये तो विचार पहले करो, पूर्वांचल की बात तो तब करो, पहले सब एक करो। कितने प्रदेश बनाओ
2: भाई,
1: कितने प्रदेश बनाओ?
3: BJP government is playing a game with this SIR. So they want to remove the Muslims from this country. That is their motive. They want to make it a Hindu country, which is impossible because as per law, people have registered as voters and living here for quite a long time and they have to be allowed to live. The government cannot, by way of SIR, cannot remove their names from voters list. The funniest thing is that former Vice President, former Home Minister L.K. Advani, all these names they have sent letters as to what is happening. The court had severely condemned it. The BJP's activity, this SIR process, the court has very severely attacked the Election Commission. The government should take care of it.
4: So big, but let me tell you, 5 months ago, more than 60 Rajya Sabha members of parliament, when only 50 were needed, 60, wrote to the chairman of the Rajya Sabha, moving a motion to remove the chief election commissioner, Ganesh Kumar. That was 5 months ago. Now today, after this big news break that two election commissioners objected to many of the CEC's actions, it's time to bring out the Rajya Sabha motion to impeach the CEC and save democracy.
5: नहीं देखिए, एक ऐसी स्टोरी आई है जिसके बारे में लोगों को शक था। मैं कई दफा मिला हूं, पिटिशनर भी हूं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। मैंने उन दोनों की बॉडी लैंग्वेज भी देखी थी तमाम मीटिंग्स में। एक व्यक्ति ज्ञानेश जी का व्यवहार, और इसमें तमाम वो बातें आई हैं कि 10 महीने के अंदर 14 बार ऑन रिकॉर्ड ऑब्जेक्शंस रेज किए गए। क्योंकि देखिए, वोटर लिस्ट सबसे सैक्रोसैंक्ट चीज है। अगर डिस्क्रिशन यू रीड एज मन मर्जी, कम व्हाट में मैं ये करूंगा, और दिस पर्सन मस्ट लीव हिज ऑफिस पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन।
6: देखिए, पुनः एक बार हम कह चुके हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया, इस प्रक्रिया के तहत अब तक समूचे देश भर में पाया गया कि एक एक व्यक्ति के 10-10 बार मतदाता सूची में नाम है। आरोप करने वाले विपक्ष के नेता क्या चाहते हैं? 10 बार मतदाता सूची में नाम हो उनके, और यदि हो, इस प्रकार का उनका समर्थन है तो उनकी मंशा पे सवाल उठते हैं। क्या वो बोगस वोटिंग कराना चाहते हैं? इसके लिए 10 बार नाम रहे। जो इस देश का नागरिक है उसका अगर मतदाता सूची में नाम नहीं है तो क्या उसका नैतिक अधिकार नहीं है नाम दर्ज कराने का? तो बड़ा स्वाभाविक और पारदर्शिता के साथ जो फर्जी वोटर है वो हटाया जाए और जो जेन्युइन वोटर है उसका नाम जोड़ा जाए। अब इस विषय को भी अगर सियासत का रंग देने का कोई प्रयास करता है तो ये ऊंची राजनीति है।
7: The Election Commission of India, led by Bharatiya Janata Party, has made a mockery out of this whole SIR issue. It's become a joke now because everywhere people are questioning because their names are being deleted. Their names are in the draft roll, but they're still being called to question why the names were not there in 2002. This is the job of the Election Commission of India to make sure all the discrepancies are looked into. But what were the Election Commission of India doing at that point of time? Now the questions are raised on the Election Commissioner. Now his own colleagues are saying that they raised some questions, red flags were raised, nobody paid attention to that. So what is going on in the Election Commission of India? That's the question. It's a serious issue. I mean, if people are doing

0: Lady Shriram College, which is one of the most prestigious and old college, which sets the narrative for the country, not only Delhi. When their principal comes out and says that, you know, we want to do online classes, it is a point of concern for me. Imagine what these girls who are coming in Delhi, first they see PGs being collapsed, then MCD comes into action after the disaster.
1: Right.
0: Then these girls have asked to evacuate their hostels, their PGs, and now rape of such instance where the people have the audacity to say that we are cops. The same thing happened in Jantar Mantar, if you remember those images. Private people pose themselves as cops. So where is the political system? And I saw the statement that the LG, where he talks about pink policing.
1: Right.
0: I want to ask Mr. LG, you'll be surprised to know thousands of Delhi police personnel are posted as private, as security guards to politicians. What is more important today?
2: दिल्ली के हालात बस से बदतर होते जा रहे हैं और हम लगातार इस बात को कह रहे हैं कि दिल्ली में अब लॉ एंड ऑर्डर नहीं बचा है और अब तो स्थिति ये हो गई है कि लगातार रोज आप अखबार देखेंगे, टीवी देखेंगे तो छोटे छोटे बच्चों से बलात्कार हो रहा है, पार्क में बलात्कार हो रहा है, रोड पे बलात्कार हो रहा है। आप सोचो देश की राजधानी के क्या हालात बना दिए गए हैं और हम चुप बैठे हुए हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री महिला होने के बावजूद भी चुप बैठी हुई है। ये सिचुएशन है, चार इंजन की सरकार ने दिल्ली की हालत ने बदतर बना दिए कि कॉलेज को कहना पड़ रहा है कि आप ऑनलाइन क्लासेस कर लीजिए। दिल्ली का इतना प्रतिष्ठित कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी का, उसको कहना पड़ रहा है ऑनलाइन क्लास। क्यों? क्योंकि आज बच्चियां रोड पे नहीं निकल सकती हैं, बच्चियां घर से बाहर नहीं जा सकती हैं। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि दिल्ली की सरकार जो निकम्मी और निठारा सरकार है वो बच्चियों को ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ाएगी और अब वो रोड पे नहीं निकल पाएंगी। तो आप सोचो ये देश की राजधानी में हो रहा है। अगर मैं आप रेप की बात करूं तो पिछले एक महीने के अंदर दिल्ली में 10 से 15 से ज्यादा रेप हो चुके हैं, रोज रेप की घटनाएं हो रही हैं।
1: Right, let's just also get breaking news that is coming in at the moment, and this is in regard to the Fitch rating that has in fact

0: Vulnerable victims. What also should be underscored here is from those series of ghastly incidents that I've just detailed for you, most of the survivors, most of the victims have been minors. Akhil now joins me live from outside LSR College. Akhil, it's really sad that education at this point is being compromised because women fear for their safety. LSR is case in point for what we're just talking about. Just take us through the latest in terms of what the students have been talking to you about. They, of course, fear for their lives. These are routes they take every day to the college. But of course, the latest incident just 2.1 kilometers away from the back gate of the college.
1: Well, Dedika, if you see, there was not just a stand-alone incident. What we have seen, that is, within just 2 weeks, a span of 2 weeks, if you see, there were three instances where what we have seen that a gang rape incident and a rape incident had taken place in the national capital. So the burden of women's safety cannot be on women alone. At this point in time, if you see, behind me, you can see the visual of LSR College. Right now, the DCP of the Southeast District, Mr. Vineet Kumar, is still inside the premises of this very college. It joined CP of the Delhi Police. He's also inside the very premises. And right now, the meeting is being conducted over there. Principal of LSR College inside the very premises. So what we have seen that earlier, if you see, the students' union of the LSR College, and apart from that, several students have given a call for protest at around 4 p.m. just outside the back gate of LSR College in order to raise the concern, in order to raise their demands regarding the safety and security just outside the college premises. Because what we have seen yesterday itself, if you see, what had happened, that the classes were in online, and not only at the college premises, but what we have seen that all the classes, most of the classes have went online.
0: All right. Akhil, I'm afraid I will have to interrupt there because there's a live press conference being held by Abhishek Manu Singhvi. This has to do with the Election Commission facing questions over its functioning.
2: Ornamental. 14 bar in logon ne jinko CEC ornamental mante hain, dummy mante hain, एक मूर्ति मानते हैं, उन्होंने 14 बार 10 महीनों में लिखित विरोध और असहमति की है। संधु साहब ने, मैं भी सिर्फ तिथियां दे रहा हूं, जिस विषय में वो बोले हैं वो और भी ज्यादा गंभीर है, उसमें मैं भी आऊंगा, लेकिन तिथियां नोट करें। अगस्त 13 को संधु साहब ने लिखा कि ये जो फॉर्म 6 में गड़बड़ी और बदला बदली हो रही है वो कोट अनकोट अनऑथराइज्ड और इलीगल है। जोशी साहब ने और संधु साहब ने, दोनों ने फॉर्म 6 का विरोध किया लिखित रूप से। जवाब, कोई जवाब नहीं, सन्नाटा। मई में उससे पहले उन्होंने विरोध किया कि अपना खुद का चुनाव आयोग का ईआरओ, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, खुद का संस्था का, खुद स्वयं अपने खुद के चुनाव आयोग के आईटी डिपार्टमेंट द्वारा एक्सेस नहीं दिया जाएगा। यानी आप जिसका काम है आपकी कंपनी में काम करना, जो अधिकार क्षेत्र है आपका, आपको आपकी कंपनी की ही आईटी डिपार्टमेंट अपने ही काम के अधिकार क्षेत्र, कार्य क्षेत्र में एक्सेस नहीं देता है। ये उन्होंने मई में लिखा। सबसे बोलने वाली चुप्पी, एलोक्वेंट साइलेंस। फिर अगस्त में संधु साहब ने लिखा कि ये तो कमाल है भैया, 20-23 लाख लोगों ने 38 लाख में से, पश्चिम बंगाल के विषय में 20-22 लाख लोगों ने, जिनका नाम हटा दिया गया था, उन्होंने अपील की। लेकिन जो आंकड़ा आप नहीं जानते हैं, 16 लाख अपील चुनाव आयोग ने की। चुनाव आयोग ने अपील की उस अफसर के ऑर्डर के विरुद्ध कि आपने इन लोगों को जोड़ा क्यों। तो संधु साहब ने लिख के पूछा, ये भी अगस्त में, कि साहब आपने किसकी अनुमति से, चुनाव आयोग ने अपील की, चुनाव आयोग की अनुमति चाहिए ना, चुनाव आयोग सिर्फ आप हैं क्या। फिर वापस चुप्पी। ये कैसा हाईजैक है, ये कैसा एक व्यक्ति विशेष हाईजैक है, ये कैसी तानाशाही है दो बुलडोजरों की। क्या ये बाकी ईसीज डमीज हैं, जैसा कि लवासा साहब ने लिखा था लिखित रूप से तब, और आशा और विश्वास करते हैं कि लवासा साहब वाला

0: जो एक वक्त दुर्दशा की गई थी वो वापस नहीं होती है। उन्होंने लिखा था कि क्या हम क्लोन्स हैं, मेरे शब्द नहीं है, क्या ये पदासीन लोग व्यर्थ हैं कि क्या ये सुंदरता बनाने के लिए एक ऑर्नामेंटल ऑब्जेक्ट है। किस धर्म का निर्वाह कर रहा है सीसी? प्रशासन का कौन सा धर्म है? राजनीति का कौन सा धर्म है? आप कार्यपालिका से निकले, कार्यपालिका का कौन सा धर्म है? आपको तो एक सेकंड भी इस पद में आगे चलने का नैतिक कानूनी किसी प्रकार का अधिकार क्षेत्र नहीं बचता। यह है पहला बिंदु। बल्कि मजाक की बात यह है दोस्तों कि चुनाव आयोग देश भर में बात करता है वन मैन वन वुमन वन वोट, करता है कि नहीं? चुनाव आयोग ने खुद ने अपने आप को एक ऐसी संस्था बना दी है जहां नो वन वोट नो वन वैल्यू, तीन लोगों की बराबरी वोट नहीं है। इन चार महत्वपूर्ण मुद्दों में जिसमें आने वाला हूं मैं, उसमें एक व्यक्ति का एकल वोट है, वन मैन वन वोट नहीं है। उच्चतम न्यायालय का 95 का निर्णय डस्टबिन में पड़ा है, लिखित विरोध का जवाब नहीं है, संवैधानिक जवाबदेही नहीं है। दूसरा इसका पहलू है जो कि बड़ा संक्षिप्त दो लाइन का पहलू है, पारदर्शिता। हम जानते हैं कि नहीं होगा, लेकिन हम बड़ा औपचारिक रूप से मांग करते हैं कि जितने भी ये डिसेंट नोट्स हैं, जितने भी ये लिखित विरोध हैं, आप समक्ष रखिए देश के। ये नहीं बोली हमको कि आरटीआई में अप्लाई करो, क्योंकि हम जानते हैं आरटीआई में क्या करेंगे आप, निश्चित रूप से निरस्त करेंगे, फिर कहेंगे अपील करो, फिर कहेंगे अपील करो। आपका जवाबदेही बनती है देश के संवैधानिक संस्था के रूप से कि सामने रखिए। तीसरा बिंदु, ये क्या मुद्दे थे जिनके विषय में ये चुनाव आयोग के वरिष्ठ मेंबरान दोनों संधु जी और जोशी जी कई सारे बहुत महत्वपूर्ण पदों से आए हैं, सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ऊपर इनका दर्जा रहा है, उन्होंने किसके बारे में लिखा? मैं चार बिंदु आपके सामने रखना चाहता हूं जो भयानक है। फॉर्म 6 में बड़ा सरल करने वाला हूं, अखबार पढ़ने में बड़ा टाइम लगता है, उसमें लाइन में जाना पड़ता है, और मैं वापस बधाई दूंगा कि शोध के साथ लिखा गया है, लेकिन मैं उस शोध को सरल करना चाहता हूं आपके सामने। फॉर्म 6 वैसा फॉर्म है जो पहली बार आप 18 साल 1 दिन के हुए, आज आपका उम्र 18 साल 2 दिन हुई, ये व्यक्ति या ये महिला जाके अर्जी देती है कि मुझे वोटर बनना है पहली बार। तो पहली बार इसमें प्रश्न आता है, आप बन नहीं सकते, आप उसमें ऑनलाइन नहीं कर सकते, प्रश्न आता है कि हाँ हम बनाएंगे, आप पहले ऑनलाइन भरेंगे, लेकिन ऑनलाइन भरने से पहले बताइए कि क्या आपके मां बाप या आपके दादा दादी पिछले एसआईआर में थे कि नहीं। चलिए ये मान लिया, ये कहां है फॉर्म 6 में? नहीं है। आपने बदला फॉर्म 6? हां। किसने बदला? चुनाव आयोग ने नहीं बदला, सीसी ने बदला। और जब चुनाव आयोग के बाकी मेंबरान ने पूछा तो सन्नाटा साइलेंस का। और सबसे रोचक बात लिखा क्या है संधु साहब और जोशी साहब ने, कि इस फॉर्म को सिर्फ सरकार बदल सकती है, ये रूल्स और रेगुलेशंस में आता है, चुनाव आयोग नहीं बदल सकता इसको। अब इसका दुष्प्रभाव देखिए, आज मेरे परिवार में 2 लोग 18 के हो जाते हैं, इनके परिवार में 4 लोग 18 के होते हैं अगले साल, इनके परिवार में 4 लोग 18 के होते हैं बाद में, यानी हर युवा व्यक्ति जो वोट में आने वाला है वो वोटर बनने में बहुत संदिग्ध हो जाएगा, बहुत सारे लोग बन ही नहीं पाएंगे, उनकी नागरिकता नहीं देखी जाएगी, उनकी उम्र नहीं देखी जाएगी, उनकी रहाइश रेजिडेंस नहीं देखी जाएगी, उनका आधार कार्ड नहीं देखा जाएगा, ये देखा जाएगा कि आपके बाप दादा और पिता और माता आपके उस एसआईआर में, वो पुराने एसआईआर में थे कि नहीं। अब इसका एक और तीसरा दुष्प्रभाव देखिए, ये सर्वमान्य है कि 13 करोड़ लोग, 13 करोड़ ज्यादातर यूरोपियन देशों की आबादी से ज्यादा होता है।
1: That's the latest statement coming from the Congress against the Election Commission, which is facing questions over its functioning. As per reports, and this is based on an Indian Express investigation, 2 election commissioners, Sukhbir Singh Sandhu and Vivek Joshi, raised formal objections at least 14 times in the last 10 months. Their objections covered changes to Form 6, centralization of voter data, software modules developed without their approval, and restrictions on electoral registration officers, the EROs. Congress MP Rahul Gandhi has questioned ECI over this and said that vote chori is crime against people. The report has triggered sharp political reactions. The Samajwadi Party chief, Akhilesh Yadav, has sought intervention of the Supreme Court in the matter. The Election Commission has now responded to the questions. ECI sources say all decisions, including SR, have been unanimous and with the approval of both the Election Commissioners and the Chief Election Commissioner.
2: मैं इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन के ऑफिसर्स को साफ कह रहा हूँ, आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, ये ट्रीजन है, देश के खिलाफ है, ये मत भूलिए। टाइम आएगा हम आपको पकड़ेंगे, बचने वाले नहीं हो।
3: ये ज्ञानेश कुमार को भी बर्खास्त करके उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए, ये देश के अपराधी है। अगर ये मोदी जी नहीं कर रहे हैं तो मैं राष्ट्रपति से आह्वान करूंगा, वो संवैधानिक हेड है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, 3 आर्मी की चीफ है, तो ज्ञानेश कुमार को अब आपके अधिकार में बर्खास्त करो और उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करो। मैं आगे जाकर ये कहूंगा, राष्ट्रपति नहीं करते तो अगर हमारे आर्मी के चीफ में लोकतंत्र और देश के बारे में स्वाभिमान का और अभिमान का कोई जज्बा है तो देश को हुकुमशाहों से बचाने के लिए, ऐसे लोगों को, लोगों से बचाने के लिए आगे आना चाहिए।
4: दैट इज वेरी शॉकिंग, मुझे आश्चर्य लग रहा है। देखो, इलेक्शन कमीशन का उद्धव जी के पार्टी ने भी झेला है, हमने भी झेला है, तो मुझे आश्चर्य नहीं लग रहा है, लेकिन दुख हो रहा है कि जिस सशक्त लोकतंत्र के लिए महात्मा गांधी जी ने इतना बड़ा योगदान किया, स्वातंत्र्य की इतनी बड़ी लड़ाई इस देश ने खड़ी की, हर घर में एक आदमी तो था जो लड़ रहा था कि आप और मैं सांस ले सके। उसके बाद आई भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हम सबको अधिकार दिए, हर एक को, आपको एक वोट, मुझे एक वोट, आपके कैमरामैन को एक वोट, प्रधानमंत्री जी को भी एक वोट। ये समता की जो भाषा हुई उस संविधान ने हमें दी और हमें कॉन्फिडेंस आया कि ये देश आगे बढ़ेगा। जरूर हमारे मतभेद हों, लेकिन क्या है कि पास होने में मजा कब है, जब मेहनत करके पास करें, कॉपी करके पास करने में क्या मजा।
5: So big, but let me tell you, 5 months ago, more than 60 Rajya Sabha members of parliament, when only 50 were needed, 60, wrote to the chairman of the Rajya Sabha, moving a motion to remove the chief election commissioner, Ganesh Kumar. That was 5 months ago. Now today, after this big news break that 2 election commissioners objected to many of the CEC's actions, it's time to bring out the Rajya Sabha motion to impeach the CEC and save democracy.
6: SIR का प्रोसेस ही गलत है। SIR को लेके हम लोग भी बहुत ऑब्जेक्शन उठाया, सुप्रीम कोर्ट तक गया। अभी देखा जाएगा जा रहा है कि 3 इलेक्शन कमीशनर में 2 आपत्ति जताए हैं, तो अभी इलेक्शन कमीशन तो लॉ मिनिस्ट्री के अंडर में है, लॉ मिनिस्ट्री को इसको साफ करना चाहिए। हम तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ हमने इम्पीचमेंट पिटीशन दिया था, तो अभी तक उसको फैसला नहीं हुआ, अभी हमको प्रेजेंट करने नहीं दिया गया, लेकिन ये प्रोटेस्ट हमारा रहेगा।
7: नहीं देखिए, एक ऐसी स्टोरी आई है जिसके बारे में लोगों को शक था। मैं कई दफा मिला हूं, पिटिशनर भी हूं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, मैंने उन दोनों की बॉडी लैंग्वेज भी देखी थी तमाम मीटिंग्स में। एक व्यक्ति ज्ञानेश जी का व्यवहार, और इसमें तमाम वो बातें आई हैं कि 10 महीने के अंदर 14 बार ऑन रिकॉर्ड ऑब्जेक्शन रेज किए गए। क्योंकि देखिए, वोटर लिस्ट सबसे सैक्रोसैंक्ट चीज है, अगर डिस्क्रिशन यू रीड एज मन मर्जी कम व्हाट में, मैं ये करूंगा और दिस पर्सन मस्ट लीव हिज ऑफिस पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन।
8: इलेक्शन कमिश्नर तो भाजपा के पोलिंग एजेंट जैसा इनका बर्ताव है, मैं इनसे मिला हूं, निहायत ही घटिया इंसान है, हर बात पे कुतर्क देने की इनको आदत है, इनको तो जेल में डालना चाहिए और इनको छोड़ना नहीं चाहिए, वरना ये आदमी देश से भाग जाएगा।
9: मिशन अस सच नाउ इन आवर कंट्री देयर इज ओनली ज्ञानेश कुमार द ऑटोक्रेट who is controlling the entire election process at the beck and call of Mr. Modi and Mr. Amit Shah. The commission has become redundant because two members of the commission has been registering their opposition, dissent over many of the decisions, controversial decisions that has been taken by Ganesh Kumar. Last 10 months, 14 times formally they objected to many of the aspects of SIR, mass deletion, addition, Form 6, all sorts of humbug that is happening in this country in the form of SIR. My demand is that Ganesh Kumar should be removed lock, stock and barrel.
10: देखो फॉर्म छह जो है वो तो जिनका नाम नहीं है उनका फॉर्म में नाम भर के जमा किया जाता है, लेकिन सरकार की मंशा जो है नियत वो ठीक नहीं
11: है।
10: ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इस देश के करोड़ों करोड़ों दलितों को, किशोरों को और देश के तमाम लोगों को मतदान करने का अधिकार दिया। उस मतदान पर भारतीय जनता पार्टी एन केन प्रकार डाका डालने काम कर रही।
12: It continues like this. If we do not have people like the two election commissioners, I don't want to take their name at this point of time. I don't know what trouble they are going to go. Unko ED ke chhape padenge ab, income tax ke chhape padenge, unke saath kya hoga? But if we continue like this, I mean, there will be a time when we are going to resemble a banana republic. There will be no democracy.
10: BJP government is playing a game with this SIR. So they want to remove the Muslims from this country. That is their motive. They want to make it a Hindu country, which is impossible because as per law, people have registered as voters and living here for quite a long time and they have to be allowed to live. The government cannot, by way of SIR, cannot remove their names from voters list. The funniest thing is that former Vice President, former Home Minister LK Advani, all these names they have sent letters as to what is happening. The court had severely condemned it. The BJP's activity, this SIR process, the court has very severely attacked the election commission. The government should take care of it.
5: देखिए पुनः एक बार हम कह चुके हैं कि SIR की प्रक्रिया, इस प्रक्रिया के तहत अब तक समूचे देश भर में पाया गया कि एक एक व्यक्ति के 10-10 बार मतदाता सूची में नाम है। आरोप करने वाले विपक्ष के नेता क्या चाहते हैं, 10 बार मतदाता सूची में नाम हो उनके, और यदि हो इस प्रकार का उनका समर्थन है तो उनकी मंशा पे सवाल उठते हैं। क्या वो बोगस वोटिंग कराना चाहते हैं, इसके लिए 10 बार नाम रहे? जो इस देश का नागरिक है उसका अगर मतदाता सूची में नाम नहीं है तो क्या उसका नैतिक अधिकार नहीं है नाम दर्ज कराने का? तो बड़ा स्वाभाविक और पारदर्शिता के साथ जो फर्जी वोटर है वो हटाया जाए और जो जेन्युइन वोटर है उसका नाम जोड़ा जाए। अब इस विषय को भी अगर सियासत का रंग देने का कोई प्रयास करता है तो ये ओछी राजनीति है।
1: In news just coming in, the IIT Bombay student death case is set to take a new turn today with the parents of Sahil Vakode expected to begin an indefinite hunger strike outside the institute's main gate. Sahil's parents, Ravindra and Sonali Vakode, had announced during a media interaction yesterday that they would launch the protest demanding the arrest of Professor Dula and Professor Kidare in connection with their son's death. I have my colleague Sujata joining me live on the story. Sujata, just take us through the details. What are we expecting in the coming hours? The parents will now be on a hunger strike right outside the institute's main gate, is what we believe.
13: Well, yes, due to the accident information that has now come out, but police has said that they haven't granted permission to the parents yet for a strike to be done here at the main gate of IIT Powai campus. However, the parents are adamant that unless and until both the dean as well as the Professor Dula and Director Sirish Kidare, both of them are not arrested, they will not end their strike. It is likely for the parents to protest at this very gate, but let me tell you that security has been beefed up around the vicinity and nobody is allowed to stand here and to participate in any such demonstration. The parents have said yesterday during media interaction that if their demands are not met, then they will continue with the protest and they will make sure that their child is justice. So this is going to be an important day. Police deployment has been increased. And simultaneously, we know that students within the gate are also protesting, and parents said that they will begin their strike outside the gate. So we are expecting some action today here at this spot in Pawai. However, parents yesterday have also said that the statement of the police officer was recorded, and the mobile phone of Sahil is also currently under scrutiny for the police investigate whether was ChatGPT really used during the examination. So it is also likely that the crime branch office, Professor Dula, is expected to come for questioning. And if done so, then of course the police will have more evidence and more statements today likely to be recorded. And also that Professor Dula has been sent on a 1 week leave by the 10-member committee that has been set up by the Board of Governors there at the IIT Powai. And also in the meeting it was decided that until the investigation is going on, Professor Dula, for 1 week, will be on a leave. Over to you.
1: All right, Sujata, thanks for those updates. The parents, they want to go on a hunger strike. All eyes will be on what next in this probe. While the probe widens in the suicide case of Sahil in IIT Bombay, the Mumbai Crime Branch has examined Sahil and his parents' phone records and recorded statements of his parents and students. Investigators are also likely to record the statements of IIT Bombay professors. Sahil's parents have announced, like we said, that they will be going on a hunger strike. The parents are demanding the arrest of Professor Dula and Professor Kidare. Meanwhile, as per sources, IIT Bombay management has sent Professor Dula on leave for a week amid this probe. NDTV has accessed details of the initial crime branch probe. Sources say there is so far no concrete evidence of abetment of suicide. As per sources, CCTV shows Sahil engaging in cheating and Professor Dula asking him to step out of class. But Sahil's family is demanding the immediate arrest of Professor Dula, alleging caste-based harassment.
11: तो जातिवाचक स्वीकार कर रहे थे, ऊपर के जाति का है, ये करे वाला है, सब उसको टॉर्चर करके और उसको उसकी आत्महत्या नहीं है, वो हुशार तो हुशार विद्यार्थी होता, हाँ, आप उसका ऑल इंडिया रैंक देखिए, हाँ, उसके वो ये कुछ भी गलत आरोप करेंगे, वो बोलेंगे कि उधर का चीटिंग करके वो एडवांस क्रैक करके आया है, उसको अरेस्ट करिए, यही मेरी विनती है।
14: मेरे बेटे को न्याय दीजिए, उस पर जो अत्याचार हुआ है उसके लिए न्याय दीजिए, और आईआईटी का जो बैकग्राउंड है वो चेक कीजिए, दलित बच्चों को क्यों, वही क्यों सुसाइड कर रहे हैं? आपका भी काम है, आप भी नागरिक है समाज के, यू आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल दिस पर, आपके भी बच्चे जाते हैं, जब अच्छे प्रशासन में जाते हैं ना, वो सभी प्रशासन में ऐसा ही चलता है, लेकिन माँ बाप का काम क्या है, चलता है, हमने उसे मेंटली सपोर्ट किया, हाँ हाँ, कि तुम्हारा फ्यूचर बहुत अच्छा है बेटा, थोड़ा सहन कर, वो हमारी गलती हो गई, अगर हम उस दिन उसको लेके गए थे ना, मेरा बच्चा आज जिंदा होता।
15: जो भी किया, लाइक कॉपी करते हुए पकड़ा गया, फिर सुसाइड कर लिया, कॉपी करना इज़ डिफरेंट, बट सुसाइड करना इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग, तो उसके लिए दुख तो है, सब बच्चों के अंदर सिंपथी है साहिल की, होनी भी चाहिए, पर फिर उसके बाद जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें डिमांड्स जो बच्चे रख रहे हैं वो डिमांड्स भी काफ़ी हद तक सही हैं, बहुत सारी सही डिमांड्स हैं, पर फिर जो केस लगाया गया है डुल्ला सर के ऊपर वो कंप्लीटली बेसलेस है मेरे हिसाब से। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन आईआईटी बॉम्बे में नहीं होता है, जितना मैंने जाना है अभी तक, मेरे साथ भी नहीं हुआ, मेरे किसी दोस्त के साथ भी कभी नहीं हुआ। मैं भी पहले प्रोटेस्ट में आया था, पहले दिन जब प्रोटेस्ट हो रहा था, इवेंचुअली मेरे पता लगा ये इतना सही नहीं है इनका पॉइंट, ये लाइक SC ST एक्ट जो लगा रहे हैं बिल्कुल सही नहीं है, उसका गलत यूज़ करा जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के एक्ट का हमारे।
16: रिसेंटली आपको पता है मिड सेमेस्टर एग्जाम चल रहा था, ही वॉज कॉट कॉपी करते हुए पकड़ा गया था, मोबाइल अंदर लेकर के चला गया था, सो जो प्रोफेसर ने कुछ बोला होगा उसके अकॉर्डिंग ही डिड सुसाइड। यहाँ पर IIT बॉम्बे किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है, मतलब जो भी प्रोफेसर्स हैं, अगर आपको मार्क्स भी, अगर एग्जाम में मार्क्स दिए जाते हैं वो रिलेटिव होते हैं, जिसका जो परफॉर्मेंस होता है उसके अकॉर्डिंग होता है, अंदर किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है।
17: सेंसस नाउ इट वाज बीन ट्राइड टू मेक, वी ऑल अग्री ऑन वन थिंग कि चेंजेस नीड टू बी ब्रॉट टू हाउ स्टूडेंट वेलफेयर इज डन, एंड स्टूडेंट वेलनेस सेल में साइकियाट्रिस्ट और होने चाहिए, थिंग्स लाइक दैट, स्टूडेंट्स वॉइस शुड बी हर्ड व्हेन डिसीजंस आर मेड, बट आई थिंक स्टूडेंट्स डिसएग्री ऑन द ट्रीटमेंट जो प्रोफेसर दुल्ला को किया जा रहा है एंड द कास्ट एंगल व्हिच इज बीइंग ब्रॉट इन, व्हिच इज नॉट द केस एट ऑल।
1: And he's from Uttar Pradesh now. State Minister O.P. Rajbhar has started a debate demanding the split of Uttar Pradesh. UP Minister O.P. Rajbhar has called for the state to be divided into four states, Purvanchal, Madhyanchal, Bundelkhand and Harit Pradesh. Rajbhar has also linked the demand to the caste census, saying the division of the state is inevitable. BJP leader Sanjeev Balyan has now backed the demand, arguing that smaller states could boost development and improve access to institutions like AIIMS and the High Court. But the Samajwadi Party has rejected the proposal. SP has questioned how many states would be created, arguing that smaller states could lose significance and that the government should first address corruption.
18: देखिए जिस दिन ये तो तय है कि प्रदेश का बंटवारा एक दिन होना है. जब प्रदेश का बंटवारा होगा तो पूर्वांचल, मध्यांचल, बुंदेलखंड, हरित प्रदेश. तब पूर्वांचल में आप उठा के देखिएगा, जहां हम लोग बैठे हैं अम्बेडकर नगर से शुरू करें अगर, तो पूरे पूर्वांचल में सबसे ज़्यादा वोट राजभर जाति का है. तो इस नाते कोई भी पार्टी जो भी गठबंधन करेगा तो वे पहले ही वो तय होगा कि पूर्वांचल राज्य जिस दिन बनेगा उसका मुख्यमंत्री राजभर का बेटा होगा.
19: राजभर जी के मुंह में घी शक्कर. हम तो पहले से बात करते रहे, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है और उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश को बेहतर बनाने के लिए अगर अलग स्टेट बनते हैं तो बहुत खुशी की बात है. देखिए हमारा एम्स कहाँ है, रायबरेली 700-750 किलोमीटर, एक एम्स गोरखपुर है, दोनों पास में है. शायद मैं और आप अगर बीमार हो जाते हैं उसमें कितनी अच्छी सोच थी कि हर प्रदेश में एक एम्स हो, लेकिन उसका फायदा नहीं मिल पाया. हमारा हाईकोर्ट कहाँ है, बहुत दूर, हम और आप न्याय के लिए नहीं जा सकते. तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं कि जब केंद्र सरकार से कोई योजना बनती है तो कहते हैं हर प्रदेश को एक दे दो, तो सिक्किम को 15 लाख की आबादी को भी एक मिलती है, गोवा को 14 लाख की आबादी को भी एक मिलती है और उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी को भी एक मिलती है. तो अगर ऐसा हो जाए तो बहुत बेहतर रहेगा, प्रदेश का विकास होगा और पश्चिम उत्तर प्रदेश देश का सबसे समृद्ध और अच्छा प्रदेश बनेगा.
20: अच्छा, जब पूर्वांचल बनेगा तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी बनेगा, फिर दक्षिण भी, दक्षिण का भी बनेगा, रोहेलखंड बनेगा, फिर रोहेलखंड बनेगा, रोहेलखंड बनेगा. पहले तो ये तो विचार पहले करो. पूर्वांचल की बात तो तब करो, पहले सब एक करो. कितने प्रदेश बनाओ
21: भाई,
20: कितने प्रदेश बनाओ.
1: A disturbing road rage incident in Mizoram has ended in horror, with an army soldier beaten to death following a traffic dispute. The 29-year-old Assam Regiment soldier was attacked by a group after an argument escalated. Despite the dispute beginning on the road, the confrontation turned deadly, leaving the soldier dead and his companion injured. The police have arrested 8 people, including 2 minors, in connection with the brutal attack. His family spoke to NDTV. They are demanding justice.
22: Please tell me what really happened. I'm passing on our condolences from the NDTV family. It's a horrific case. It needs justice. 8 people have been arrested. But what really happened? Could you narrate the story to us?
23: Yes, sir. Actually, he came from Jammu and Kashmir. Sunday. Mm-hmm. And Sunday. At Jammu and Kashmir on Sunday. And he reached Lakhvi at Sunday. At Sunday, so his friend, who is a truck driver, his deep friend, and they contact, and my brother tell him that I will come down with you because taking a maxi cab is very expensive. So if you are going down, I will come along with you. And they, 2 friends, then they make the situation where to pick my brother. And when they on the way to the home, there were some the murderers. They were playing some futsal or maybe on their way to home. The road is not good, and the driver told them that they. They're on their way, so the other people, they argue with the driver. So my brother was trying to help his friend, and he negotiated with them that, oh, it's okay, it's because of the road, so he tried to help him, but when you get down,

0: डेमोक्रेसी,
1: ये भयानक नहीं लगता आपको? आपने पीढ़ी दर पीढ़ी, आपने नहीं, माननीय मुख्य चुनाव आयुक्त ने, जो समझते हैं कि संविधान भी वो हैं, चुनाव आयोग भी वो एकल हैं, देश भी वो हैं, और वो सिर्फ एक व्यक्ति की बाहर से सुनते हैं, एक दो की भी नहीं। इस देश की हमने इस हालत पे ले आए, इस कगार पे ले आए हैं इसको।
2: 10 महीने में इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन की जिसकी सबसे बड़ी मान्यता है, हम और आप सोचते हैं कि वो निष्पक्ष है, निष्पक्ष इंस्टीट्यूशन से ही उम्मीद करते हैं कि डेमोक्रेसी को और स्ट्रांग करेंगे, डेमोक्रेसी को और मजबूत करेंगे, लेकिन जब वहीं पर इस तरह का व्यवहार हो रहा हो कि 14 बार 10 महीने में कई उसके जो अधिकारी थे उन्होंने अपना नोट लिखा है, तो आप कल्पना कर सकते हो इलेक्शन कमीशन किसके बिहाफ पे इस तरह का व्यवहार कर रहे थे। ये हमारे लोकतंत्र के लिए घातक है।
3: सुना करते थे कि मोदी जी और अमित शाह वोटों की चोरी करके एक के बाद एक चुनाव जीतते जा रहे हैं। ये लोग चुनावों की चोरी कर रहे हैं, वोटों की चोरी कर रहे हैं और बहुत बड़ा वोटों का घोटाला करके ये चुनाव जीतते जा रहे हैं। और इन वोटों की चोरी में इनके जो सरगना है मोदी जी के और अमित शाह के, वो हैं ज्ञानेश कुमार। और आज हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मांग करते हैं कि ज्ञानेश कुमार को गिरफ्तार किया जाए और उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाए। और पिछले कुछ सालों में जितने चुनाव हुए हैं, दिल्ली का, महाराष्ट्र का, बिहार का, वेस्ट बंगाल का, हरियाणा का, मध्य प्रदेश का, ये सारे चुनाव कैंसिल करके दोबारा कराए थे।
4: आज तक तो सिर्फ हम बोल रहे थे, मतलब विपक्ष, लेकिन आज पहली बार, शायद देश के इतिहास में ऐसे पहली बार हुआ होगा कि 3 आयुक्त तो होते हैं इस चुनाव आयोग में, और जो 2 आयुक्त तो हैं विवेक जोशी और सुखबीर सिंह संधू, इन्होंने अब कैबिनेट सेक्रेटरी के पास एक लेटर देकर कंप्लेंट दी है कि चुनाव आयोग में ज्ञानेश कुमार की मनमानी चल रही है। तो ये बहुत ही गंभीर मामला है और प्रजातंत्र मारा जा रहा है। और जैसे मैंने कहा कि जैसे गैंग होती है ना, जो पार्टी तोड़ती है, पार्टी की चोरी करती है और प्रजातंत्र का खून करती है, हत्या करती है, तो वो उस गैंग का पर्दाफाश इन दोनों ने किया है।
5: दैट इज वेरी शॉकिंग, मुझे आश्चर्य लग रहा है। देखो, इलेक्शन कमीशन का उद्धव जी के पार्टी ने भी झेला है, हमने भी झेला है, तो मुझे आश्चर्य नहीं लग रहा है, लेकिन दुख हो रहा है कि जिस सशक्त लोकतंत्र के लिए महात्मा गांधी जी ने इतना बड़ा योगदान किया, स्वातंत्र्य की इतनी बड़ी लड़ाई इस देश ने खड़ी की, हर घर में एक आदमी तो था जो लड़ रहा था कि आप और मैं सांस ले सके। उसके बाद आई भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हम सबको अधिकार दिए, हर एक को, आपको एक वोट, मुझे एक वोट, आपके कैमरामैन को एक वोट, प्रधानमंत्री जी को भी 8 वोट। ये समता की जो भाषा हुई उस संविधान ने हमें दी, और हमें कॉन्फिडेंस आया कि ये देश आगे बढ़ेगा। जरूर हमारे मतभेद हो, लेकिन क्या है कि पास होने में मजा कब है, जब मेहनत करके पास करें, कॉपी करके पास करने में क्या मजा।
6: So big, but let me tell you, 5 months ago, more than 60 Rajya Sabha members of parliament, when only 50 were needed, 60, wrote to the chairman of the Rajya Sabha, moving a motion to remove the chief election commissioner, Ganesh Kumar. That was 5 months ago. Now today, after this big news break that 2 election commissioners objected to many of the CEC's actions, it's time to bring out the Rajya Sabha motion to impeach the CEC and save democracy.
7: नहीं, देखिए, एक ऐसी स्टोरी आई है जिसके बारे में लोगों को शक था। मैं कई दफा मिला हूं, पिटिशनर भी हूं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, मैंने उन दोनों की बॉडी लैंग्वेज भी देखी थी तमाम मीटिंग्स में। एक व्यक्ति ज्ञानेश जी का व्यवहार, और इसमें तमाम वो बातें आई हैं कि 10 महीने के अंदर 14 बार ऑन रिकॉर्ड ऑब्जेक्शंस रेज किए गए। क्योंकि देखिए वोटर लिस्ट सबसे सैक्रोसैंक्ट

0: चीज है। अगर डिस्क्रिशन यू रीड एज मन मर्जी कम वॉट में, मैं ये करूंगा, और दिस पर्सन मस्ट लीव हिज ऑफिस पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन।
1: मिशन अस सच नाउ इन आवर कंट्री देयर इज ओनली ज्ञानेश कुमार द ऑटोक्रेट हु इज कंट्रोलिंग द एंटायर इलेक्शन प्रोसेस एट द बेक एंड कॉल ऑफ मिस्टर मोदी एंड मिस्टर अमित शाह। The commission has become redundant because two members of the commission has been registering their opposition, dissent over many of the decisions, controversial decisions that has been taken by Ganesh Kumar. Last 10 months, 14 times formally they objected

0: Welcome back. India's 28-year wait for an Asian Games weightlifting medal finally ended with Mirabai Chanu securing a silver in the women's 49-kilo category. Mirabai lifted a combined 198 kilograms, 87 kilos in the snatch, and 111 kilos in the clean and jerk. This is Mirabai's first Asian Games medal, adding to her Olympic, World Championship and Commonwealth Games successes. In fact, NDTV's Borya Majumdar spoke to Mirabai Chanu. Listen in.
1: Mira. खत्म हो गया जो इतना दिन से आप कोशिश कर रहे थे सर कोशिश कर रहे थे आज सुबह भी इनके साथ मेरा बात हो रहा था और इन्होंने मेरे से कहा चिंता मत करो सब कुछ ऑन ट्रैक है एफर्ट एकदम इट वाज ब्रिलियंट
2: हाँ हमने बहुत कोशिश किया था ये सर. बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कमल गेम्स के बाद बहुत टाइम भी मिल रहा था तो हम कॉन्फिडेंस थे कि जो इस बार एशियन गेम्स में ज़रूर एक मेडल हम जरूर लेना है तो सर को भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस थे हर टाइम में हर ट्रेनिंग में तो बस यही सर का जो कॉन्फिडेंस है मेरा स्ट्रॉन्ग मतलब उनसे ताकत मिलते हैं तो बस मैंने भी ट्राई किया था कि इस बार तो पक्का मुझे जरूर एक मेडल जरूर इंडिया के लिए देना है
1: सर आपने एग्जैक्टली जो बोला था सुबह भी बोला था जितना दिन मेरे से आपका 30-32 बार बात हुआ है कॉमनवेल्थ के बाद एग्जैक्ट जो बोला आपने वही हुआ
3: एक्चुअली बहुत टाइम से टोटल जो है जितने भी कम्पिटिटर हैं उनको स्टडी कर रहे थे और काफ़ी लंबी प्रैक्टिस है जो सबसे मेन पॉइंट था कि हम इंजरी फ्री यहाँ तक आना चाहते थे और हम इंजरी फ्री स्टेज पे थे तो मुझे पता था कि हम अपना मतलब मेडल के लिए जो भी बेस्ट टोटल डालना पड़ेगा डाल सकते हैं और उसी हिसाब से आपको मैं बता रहा था कि ये हम कर सकते हैं और जो मेरा आइडिया था अगर हम और भी 2-4-5 किलो की ज़रूरत पड़ती सिल्वर के लिए तो कैपेसिटी थी हम जा सकते थे स्नैचों में इसीलिए हम अपने आप को सेफ लेकर चले कि हम अटैम्प्ट क्लियर करते हैं कि केजी की वैल्यू है तो अब नो डाउट जो है गोल्ड मेडलिस्ट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी हमारे से तो मैं
4: वह प्रेस नोट भी मैं लेके आया हूँ जो ECI ने जारी किया है मैंने भी उसे पढ़ा है मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने भी पढ़ा होगा आप सिचुएशन देखिए अगर तीनों इलेक्शन कमिश्नर आपस में मैं बहुत सीधे शब्दों में समझाता हूं ताकि गांव में बैठी मेरी दादी मां भी समझ सके अगर तीनों कमिश्नर जो इलेक्शन करवाते हैं देश में उनके बीच में आपस में संवाद नहीं होता है किसी प्रकार की कोई टीका टिप्पणी नहीं होती है किसी प्रकार का सलाह मशवरा नहीं होता है और सब जी हां करते रहते हैं तो यही विपक्षी पार्टी कहते हैं कि ये तो डिक्टेटरशिप है जी इन तीनों को तो इसी सरकार ने बनाया है और ये तीनों जी हां करते रहते हैं ये तीनों जो हैं गोदी वाले हैं आपको तो गोदी मीडिया बोलते हैं ये तीनों भी गोदी वाले हैं ऐसे ही बोलते हैं ना अब ये तीनों के बीच में 14 पत्राचार हुआ है These are official deliberations between three election commissioners. What we gather from media, कोई भारतीय जनता पार्टी जाके चिट्ठी नहीं पढ़ती है मीडिया में जो आया है कि तीनों के बीच में कुछ ऑफिशियल deliberations हुए हैं जो कि एक अच्छे लोकतंत्र की निशानी है आप मुझे बताइए लोकतंत्र में अगर किसी मुद्दे को लेकर हम सब आपस में चर्चा करते हैं कि यह विषय ठीक रहेगा या नहीं वह विषय ठीक रहेगा नहीं और इस पर पत्राचार भी होता है और इस पर नोटिंग्स भी होती है और अंततोगत्वा उस पर एक निर्णय होता है तो लोकतंत्र यह है या हां से हां मिलाकर सभी चिट्ठी एक जैसी होनी चाहिए वह लोकतंत्र है आई वुड से दैट टुडे ऑल द ऑपोजिशन पार्टीज हैव फॉलन इनटू द ट्रैप वेयर दे सेड दैट द इलेक्शन कमिश्नर एंड दिस गवर्नमेंट was a dictatorial government. Rather, I would say that this is pure democracy. जहां पर deliberations हो रहे और election commission ने अपने पहले ही छंद में अपने पहले ही paragraph में एक बात बड़े स्पष्टता के साथ लिख दिया है सारे official democratic deliberation होने के बाद अंततोगत्वा at the end SIR जो हुआ special intensive revision जो हुआ वो यूनानिमिटी के साथ हुआ, अर्थात हम सब ने तीनों कमिश्नर उसमें यूनानिमस थे, उसमें किसी प्रकार का मतांतर, मतभेद, मनांतर नहीं था, देवर ऑल ऑन द सेम पेज। कुल मिलाकर के कहानी आज की इतनी है कि द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नॉर एनी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इन इंडिया इज अंडर अ डिक्टेटोरियल रूल, दे आर इन फंक्शनिंग इन अ डेमोक्रेटिक मैनर एंड ऑफ कोर्स दे अपहोल्डिंग द डेमोक्रेसी ऑफ दिस कंट्री। लोकतांत्रिक तरीके से काम करके संविधानिक संस्थाएं लोकतंत्र को बचा रही हैं। अब हमारे ऊपर आक्षेप क्या है, ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आक्षेप है कि हम वोट चोरी करके जीत जा रहे हैं। ये बार बार वोट चोरी का जो आक्षेप लगाया गया, मैं बहुत दूर नहीं जाता हूं, मैं तो लेके बहुत सारे कागज आया हूं, आंकड़े तो मैं लेके आया हूं 2014 से। मैं आरंभ करता हूं बंगाल से ही, मैं केवल एक ही उदाहरण देता हूं क्योंकि हरियाणा के भी उदाहरण दिए गए। महाराष्ट्र के वोट चोरी के एलिगेशन के पश्चात मैंने खुद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और किस प्रकार किस सीट पर कितने वोट डिलीट हुए थे और उन सीटों पर किसकी जीत हुई थी, यह आंकड़े मैंने स्वयं ने रखे थे। तो मैं दोबारा वो नहीं खोलूंगा पन्ना, मगर मैं वेस्ट बंगाल का, क्योंकि बंगाल का चुनाव हाल फिलहाल का है और सभी अभी हाय तौबा मचा रहे हैं कि देख लिया बंगाल का चुनाव चोरी हो गया था, तो चलिए पिटारा खोल के देखते हैं कि जहां से सर्वाधिक डिलीशन हुआ, व्हाट इज द एडिफिस ऑन विच द एक्यूजेशन ऑफ द ऑपोजिशन स्टैंड्स, किस पर एक्यूजेशन खड़ा है। द एडिफिस इज दैट बिकॉज ऑफ डिलीशन ऑफ वोटर्स फ्रॉम द वोटर लिस्ट द भारतीय जनता पार्टी वन एंड द ऑपोजिशन लॉस्ट। नाउ लेट मी प्रूव द कॉन्ट्ररी टू इट। आप बंगाल में जाइए, बंगाल में सबसे अधिक वोट कटी 20 विधानसभा सीटों पर, यह इंडियन एक्सप्रेस ने ही रिपोर्ट बनाया है, ये उन्हीं के रिपोर्ट्स में पढ़ रहा हूं। 20 विधानसभा सीटों की जांच की गई और सबसे ज्यादा उनमें नाम कटे। उनमें 13 सीटों पर ममता बनर्जी की टीएमसी की जीत हुई, एक सीट पर कांग्रेस की जीत हुई और 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं उन सीटों का नाम भी पढ़ लेता हूं ताकि आप वेरीफाई कर ले कि हमने वोट चोरी की तो जीत किसी और की कैसे हुई। शमशेरगंज में 74,775 वोट डिलीट हुए, जीता टीएमसी। लालगोला 55,420 वोट डिलीट हुए, जीती टीएमसी। भगवानगोला 47,493 वोट्स डिलीट हुए, जीती टीएमसी। रघुनाथगंज 46,100 वोट डिलीट हुए, जीती टीएमसी। मोटियाबुर्ज 39,579 डिलीट हुए, जीती टीएमसी। फरक्का 38,222 डिलीट हुए, जीता कांग्रेस। सूती 37,965 वोट डिलीट हुए, जीती टीएमसी। मोथाबाड़ी 37,255 डिलीट हुए, जीती टीएमसी। इतने सीट्स पे टीएमसी और कांग्रेस ही हम सुन रहे हैं सर्वाधिक वोट जहां डिलीट हुए। अब जंगीपुर 36,581 डिलीट हुए, जीती बीजेपी। रतुआ 35,573 बीजेपी। तो कुल मिलाकर के मैं 200 सीटों का नाम नहीं पढ़ रहा हूं, मगर मैं स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि 20 विधानसभा सीट जहां पे सर्वाधिक वोट डिलीट एसआईआर से हुए, वहां सर्वाधिक जीत टीएमसी की हुई। कांग्रेस भी एक सीट जीती, भारतीय जनता पार्टी 6 सीट ही जीती है। अब एक दूसरा मुद्दा उठता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। मैं आज एकदम बिल्कुल स्पष्ट यहां कहने वाला हूं, ये जो आक्षेप हमारे पे लगाया जाता है कि वर्तमान में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनके आने के पश्चात और एसआईआर के आरंभ होने के पश्चात भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी करके चुनाव जीत रही है और कुछ खेल कर रही है। कब वर्तमान चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट कब हुआ? 19 फरवरी 2025। उससे पहले कितने चुनाव हुए थे और क्या स्थिति थी देश में, मैं आपके सामने रखता हूं। उससे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2014 का इलेक्शन कराया था लोकसभा का, 2019 का लोकसभा का इलेक्शन कराया था, 2024 के लोकसभा का इलेक्शन कराया था, और तीनों में नतीजे क्या थे? 2014 में बीजेपी और एनडीए 282 सीट्स पे, 2019 के लोकसभा में बीजेपी एनडीए 303 सीट पे, और 2024 के लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी एनडीए 240 बीजेपी 240 सीट पे, एनडीए कुल मिलाकर 293 सीट्स पे। तो ये सब कुछ 19 फरवरी 2025 से पहले हुआ। 2014 में कौन कौन से चुनाव हुए, ये आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ा लंबा रहेगा, मगर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। ये बार बार हम वोट चोरी करके जीत रहे हैं और कुछ घालमेल है, यह भ्रम, यह भ्रामक अवस्था देश में तोड़ने की आवश्यकता है। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के कुछ जो साथी घटक दल हैं, उनके झूठ के पुलिंदों को तोड़ना और गांव के लेवल तक तोड़ना जरूरी है, ताकि भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो, इसलिए नहीं, ताकि देश के संविधान के ऊपर एक गरीब मां का भरोसा भी ताकतवर रूप से बना रहे। 2014 में महाराष्ट्र में चुनाव हुए, बीजेपी जीती, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सरकार भी बनती है। हरियाणा में बीजेपी की मेजॉरिटी आती है, झारखंड में बीजेपी लेड गवर्नमेंट बनती है, जम्मू कश्मीर में बीजेपी पीडीपी की सरकार बनती है, 2015 में जम्मू कश्मीर में पुनः बीजेपी बीजेपी और पीडीपी की सरकार बनती है, बिहार में एनडीए हारती है 2015 में, 2016 में आसाम में बीजेपी जीतती है, केरल में एनडीए हारती है, वेस्ट बंगाल में एनडीए हारती है, तमिलनाडु में एनडीए हारती है, 2017 में उत्तर प्रदेश बीजेपी जीतती है, उत्तराखंड बीजेपी जीतती है, गोवा बीजेपी लेड गवर्नमेंट बनती है, मणिपुर बीजेपी लेड गवर्नमेंट बनती है, हिमाचल प्रदेश बीजेपी मेजॉरिटी, गुजरात बीजेपी मेजॉरिटी, 2018 में त्रिपुरा बीजेपी सरकार, नागालैंड बीजेपी लेड कोएलिशन एनडीए सरकार, मेघालय बीजेपी लेड कोएलिशन एनडीए सरकार, 19 में अरुणाचल प्रदेश बीजेपी मेजॉरिटी, ओडिशा में बीजेपी हारती है बीजेडी जीतती है, महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना अलायंस जीतती है, 2020 बिहार में एनडीए जीतती है सरकार बनाती है। इसी प्रकार मैं पूरे 2024 तक का चुनाव नतीजा आपके सामने रख सकता हूं, जो दिखाता है कि बहुत ही स्मूथली इलेक्शन प्रोसेस 2014 से अब तक चलता आ रहा है। अब जहां तक धांधलियों का सवाल है, ऐसा तो नहीं हो सकता कभी विश्व में कि कांग्रेस पार्टी मौजूद हो और धांधली ना हुआ हो। धांधली का जन्म, घोटालों का जन्म कांग्रेस से ही हुआ है, तो इसलिए धांधली, घोटालेबाजी, गड़बड़ियां, कॉम्प्रोमाइज ऑफ द कांग्रेस पार्टी और इलेक्शन कमीशन, मैं अपने अंतिम हिस्से में इसको एक्सपोज करता हूं प्रेस वार्ता के। कौन कौन से ऐसे इलेक्शन कमिश्नर्स थे जो आगे चलकर या तो कांग्रेस से मंत्री बने, या तो कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़े, या कांग्रेस ज्वाइन किए? केवीके सुंदरम 1958 टू 1967 थे चेयरमैन ऑफ लॉ कमीशन और पद्म विभूषण दिया गया। नागेंद्र सिंह 1972 टू 1973 ये इलेक्शन कमिश्नर थे, पद्म विभूषण दिया गया। आर के त्रिवेदी 1982 टू 1985 पद्म विभूषण और गवर्नर का पोस्ट भी दिया गया। वी एस रमा देवी 1990 में इलेक्शन कमिश्नर थी, उन्हें गवर्नर बनाया गया। टी एन सेशन 1990 टू 1996 कॉन्टेस्टेड इलेक्शन फ्रॉम कांग्रेस इन 1996। और टी एन सेशन का मुझे बोलना नहीं चाहिए, मगर मेरे पास आर्टिकल है, मैं दिखाऊंगा, थोड़ा अनपार्लियामेंट्री शब्द है। उन्होंने अपने जो को कमिश्नर्स बनाए गए थे उनके समय, उनको डोंकीज एंड रास्कल्स भी कहा था। ये हेडलाइन आर्टिकल छपा था कि दे आर डोंकीज एंड रास्कल्स, शुड नॉट बी अलाउड इन टू द इलेक्शन ऑफिस। इस पूरे विषय को लेकर पिटीशन भी हुआ था सुप्रीम कोर्ट में कि मेजॉरिटी डिसीजन होना चाहिए या केवल सीईसी अकेले ही डिसीजन दे सकते हैं। तो वो टीएन सेशन कांग्रेस से 96 में चुनाव लड़ चुके थे। एमएस गिल, जिनका एक प्रकरण मैं यहां अभी बताने वाला हूं, एमएस गिल 1996 से 2001 ये कमिश्नर भी थे, सीईसी भी थे, ये राज्यसभा मेंबर बने कांग्रेस से 2004 से 16, मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स 2009 से 11 और मिनिस्टर ऑफ एसपीआई 2011 में बने। जेएम लिंगदो जी 2001 से 2004 तक थे सीसी और वो कांग्रेस ज्वाइन किए। एन गोपालस्वामी 2006 से 2009 और उन्हें पद्म भूषण दिया गया। मैं यहां आपको आज बताना चाहता हूं नवीन चावला की कहानी। नवीन चावला जी को अखबारों में आज छपा है, हम अखबार के विषय को लेकर चर्चा कर रहे हैं, अखबारों में हेडलाइन आया था कि सोनिया गांधी अपॉइंटेड नवीन चावला एज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। सोनिया गांधी जी किस पद पे थी जो उन्होंने अपॉइंट कर दिया नवीन चावला को चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के रूप में? और आप देखिए ये 2005 की बात है, 2005 सोनिया गांधी अपॉइंटेड नवीन चावला एज इलेक्शन कमिश्नर। व्हाट अथॉरिटी डिड सोनिया हैव? ये आर्टिकल छपा है 2005 का। 2009 में उस समय के तत्कालीन सीईसी एन गोपालस्वामी ने एक चिट्ठी लिखा प्रतिभा पाटिल जी को कि आप नवीन चावला जी को हटाइए इलेक्शन कमीशन के रूप में, वो इलेक्शन कमीशन थे, सीईसी नहीं थे उस समय, कि आप इनको इलेक्शन कमीशन के पोस्ट से हटाइए क्योंकि ही इज वर्किंग फॉर कांग्रेस, ये कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। और यहां तक कहा गया कि जब ये लू ब्रेक के लिए जाते हैं, व्हेन ही गोज फॉर लू ब्रेक ही इनफैक्ट गिव्स ऑल इंफॉर्मेशन टू द कांग्रेस पार्टी, सारे इंफॉर्मेशन लू ब्रेक में जाके कांग्रेस पार्टी को देते हैं, इसलिए इनको हटा देना चाहिए। ये प्रतिभा पाटिल जी तत्कालीन राष्ट्रपति को लिखा गया गोपाल स्वामी जी द्वारा, सीसी द्वारा। सुनने के बजाय कांग्रेस ने उन्हें सीईसी बना दिया, मतलब हटाना तो बहुत दूर की बात है, उन्हें सीईसी बनाया। और 2009 के लोकसभा के इलेक्शन का दायित्व कांग्रेस पार्टी ने चावला जी के ऊपर, नवीन चावला जी के ऊपर छोड़ा और 2009 में कांग्रेस पार्टी की जीत हुई। उस समय भी राहुल गांधी पार्लियामेंट में थे, उस समय तो एक दिन उन्होंने टी शर्ट पहन के प्रेस

कॉन्फ्रेंस नहीं किया, आज आ गए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। गोपाल स्वामी जी ने प्रतिभा पाटिल के साथ साथ 16 जनवरी 2009 में चिट्ठी मनमोहन सिंह जी को भी लिखा कि आप इसी नवीन चावला जी को हटाइए बिकॉज ऑफ हिज बायसनेस टुवर्ड्स कांग्रेस। फिर भी मानी नहीं गई बात। नवीन चावला जी के ऊपर एमपी लैट फंड और लैंड अलॉटमेंट का केस हुआ, उसके बाद भी उन्हें हटाया नहीं गया सीईसी के पद से। कांग्रेस रूल के समय मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं यहां पर, वीएस संपत का केस 2012 में जो नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाए गए उनका नाम वीएस संपत था। एलके आडवाणी जी ने बहुत सख्त रूप से इस पे आपत्ति जताते हुए कहा कि ये कहीं ना कहीं अन्याय है, एक कोलिजियम बनना चाहिए जिसके माध्यम से सीईसी का चयन हो, मगर इस विषय को माना नहीं गया। और आज आप देखते हैं अभी सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट आया है, बड़ा बेंच उस पर निर्णय लेगा, मगर आज आपने देखा है पहली बार जब से भारत स्वतंत्र हुआ था तब से लेकर 2023 तक जहां इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर केवल अपने विम्स एंड फैंसीज पे करते थे, आज एक कमिटी बनाई गई है जिसमें एलओपी लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी शामिल हैं ताकि उनकी राय भी ली जा सके एज फार एज अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन एंड द कमिश्नर्स आर कंसर्न्ड। न्यूज़पेपर्स पे डिस्कस कर रहे हैं तो एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल छपा हुआ है जिसमें सोनिया गांधी जी के डिसक्वालिफिकेशन का केस जो 2009 में था उसमें दो इलेक्शन कमिश्नर्स ने डिसेंट लेटर दिया था। The EC posting is the best post-retirement option for IAS officers in general. It allows them as a maximum 6 years of job. ये आर्टिकल में छपा है। EC sources: Sonia's strategy is to ensure Chawla heads the panel during May 2009 general elections. He will complete 65 years on June 30 that year. Sonia Gandhi appoints Naveen Chawla as election commissioner. ये आर्टिकल एक बहुत प्रतिष्ठित मीडिया हाउस का है। और सोनिया गांधी जी को डिस्क्वालिफाई नहीं करना है, ये दो इलेक्शन कमीशन्स ने इसमें मत बनाया था कि डिस्क्वालिफाई नहीं करना है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मत बनाया था कि इस पे जांच होनी चाहिए। आप सोचिए वहां भी डिसेंट हुआ था मगर उस बात को छिपाने की किस प्रकार कोशिश की गई थी और नवीन चावला को आगे इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया था। उस समय एक बड़े अखबार हिंदुस्तान टाइम्स का ही यहां पे जिक्र है, मैनी इन कांग्रेस वांट नवीन एस सीईसी टू प्रीएम्प्ट बीजेपी ट्रायड। आप देखिए खुद अखबारों ने छापा है। इस प्रकार अनेक आर्टिकल बीजेपी को हराने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट किस प्रकार हो सकता है, जो मैंने आपको कहा था चावलाज लू ब्रेक्स लीड टू कांग्रेस फोन कॉल्स सीईसी, ये सारे अखबार की कटिंग्स और बहुत सारे कटिंग्स मेरे पास हैं, मैं उन सब में नहीं जा रहा हूं। कुल मिलाकर के आप तय करिए कि अगर तीन अफसरों के बीच में पत्राचार होता है, तीन अफसर पत्राचार में अपने अपने मन की बात के वो अपने अपने विषयों को साझा करते हैं और अंततोगत्वा कंसेंसस के साथ रिजल्ट पर पहुंचते हैं तो ये डेमोक्रेसी है, या एक ही भाषा में पत्र लिखना और उसके बाद एक ही नतीजे पर पहुंचना, ये डेमोक्रेसी है। मुझे लगता है वी कैन हैव नो बेटर टाइम फॉर डेमोक्रेसी देन द प्रेजेंट टाइम इन विच दो यूनानिमिटी इज देयर इन एसआईआर बट स्टिल वी हैड डिस्कशंस एंड डिबेट इन वन ऑफ द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज ऑफ इंडिया दैट इज द इलेक्शन कमीशन। और लास्ट में मैं कहना चाहूंगा एज फार एज एसआईआर इज कंसर्न, बिकॉज ये सारी चीजों के मध्य में एसआईआर है, द सुप्रीम कोर्ट डिलीवर्ड वन मेजर फाइनल जजमेंट डायरेक्टली अपहोल्डिंग द लीगैलिटी ऑफ एसआईआर ऑन 27 मई 2026 में इन सभी विषयों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सामने गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे अपना जजमेंट बड़े स्पष्ट रूप से एसआईआर को अपहोल्ड करते हुए दिया है। अगर विश्वास सुप्रीम कोर्ट पर भी नहीं है, विश्वास इलेक्शन कमीशन पर भी नहीं है, विश्वास ईवीएम मशीन पर भी नहीं है, अंततोगत्वा जनता पर तो विश्वास करना ही पड़ेगा।

0: जनता ही वोट देती है, जनता ही हराती या जिताती है, इसलिए आज यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हम जनता की दरबार में छोड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: पूछे पूछे पीयू जी।
0: ये तो चाहते ही हैं, ये सारे जो विपक्षी दल चाहते हैं कि ये घर में बैठे रहें और इनको लाके हम गद्दी दे दें या उस पर बैठ जाएं, इनको लाकर हम सत्ता दे दें और वो उस पर बैठ जाएं। कोई मेहनत थोड़ी करना चाहता है। ये राहुल गांधी जी हर 10 दिन में विदेश के टूर पे जाएंगे और टूर पे आने के बाद कहीं हरियाणा की गद्दी रखी जाएगी, वो उस पर बैठ जाएंगे, फिर चले जाएंगे 25 दिन के लिए स्विट्जरलैंड, वहां से लौट के आएंगे तो महाराष्ट्र की गद्दी रहेगी, वो उस पर बैठ जाएंगे, फिर चले जाएंगे 30 दिन के लिए घूमने के लिए होनोलुलु, वहां से लौट के आएंगे तो हम हरियाणा की गद्दी, बंगाल की गद्दी रहेंगे, वो उस पर बैठ जाएंगे। ऐसे होता है क्या? अरे धूप में जलना पड़ता है, तपना पड़ता है, उनके तप का अर्थ अलग होता है, वो धूप में तपना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, तब जाके सीट मिलती है, उन्हें बोले तपस्या करेंगे, इस प्रकार के एलिगेशन से काम नहीं होता है।
1: पूछे रवि जी पूछे।
0: देखिए देशद्रोह कौन कर रहा है ये पूरी देश देख रही है। देशद्रोह क्या होता है? देशद्रोह होता है जब आप विदेशी भूमि में जाकर के अपने ही देश के सुप्रीम कोर्ट, अपने देश के इलेक्शन कमीशन, अपने देश के प्रधानमंत्री, अपने देश की सारी संस्थाओं को आप छोटा करके दिखाते हैं और आप वेस्ट मतलब पाश्चात्य देश में जाकर कहते हैं कि यू शुड इंटरवीन टू करेक्ट द डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया, अमेरिका शुड इंटरवीन इन इंडिया, The European countries should intervene in India to see to it that India's democracy is restored. क्यों? राहुल गांधी कौन है जाके वेस्ट में कहने वाले कि अमेरिका और यूरोप के राष्ट्र हमारे देश के लोकतंत्र में घुसपैठ करें ताकि देश में लोकतंत्र बहाल हो जाए? इससे बड़ा ट्रीजन क्या हो सकता है? A traitor has no business of calling anyone else traitor. Ask him, he knows what are the best qualities of traitors. एक देशद्रोही के सबसे अच्छे गुण क्या होते हैं वो राहुल से बेहतर कोई नहीं जानते।
1: प्रशांत जी का ले लेते हैं, फिर कुमार जी का, फिर मोहित।
0: देखिए पहली बात तो है, मैं आपको ठीक करना चाहूंगा, कोई ये सुबह से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है ऐसा नहीं है, ये सुबह बहुत पहले से हुई है। 2014 की जब सुबह हुई है तब से ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं कि किस प्रकार से जनता जनार्दन के मन में अविश्वास का भाव पैदा हो। जब कांग्रेस पार्टी ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी से इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, विकास की राजनीति में हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम नहीं जीत सकते, तो इन्होंने देखा कि लेट अस डिसक्रेडिट द कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया। कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन को, कौन से संवैधानिक संस्था को इन ऑपोजिशन पार्टीज ने छोड़ा है? सुप्रीम कोर्ट तक को घसीट के रोड पे खड़ा कर दिया इन लोगों ने। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के विषय में किस किस प्रकार की टिप्पणी की, सुप्रीम कोर्ट के विषय में राम मंदिर को लेकर उनके जजमेंट के विषय में किस प्रकार की टिप्पणी की, इलेक्शन कमीशन के विषय में, ईवीएम के विषय में, ये आज से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं, कोई ज्ञानेश जी के आने के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ है, ये तो सारे इलेक्शन में ईवीएम के ऊपर टीकरा फोड़ते थे। ये तो एक बार गलती से इनसे हो गया, मेरे साथ डिबेट में बैठे थे कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता। ये आप लोग तो सर्वे करते हैं, एग्जिट पोल का नतीजा दिखाया, तो एग्जिट पोल के नतीजे में उन्होंने कहा ईवीएम हैक हुआ है, तो मैंने कहा एग्जिट पोल में तो ईवीएम होता ही नहीं है ना, एग्जिट पोल में ईवीएम कैसे हैक हो।
2: All right, the BJP there addressing a press conference over this entire controversy that has exploded regarding the Election Commission. In fact, saying that there were discussions, it has been revealed. Remember, a statement was released by the Election Commission that said that there had been differences of opinion and discussions, but that all decisions were unanimous. Now, let's take you through this entire controversy that has seen sharp reactions from the opposition as well. The Election Commission issued a statement earlier today after questions raised over its functioning and allegations of internal rifts. In the statement, the Election Commission of India said that differing views and observations are a normal part of deliberation in any institution. They are part of the decision-making process before a final decision is taken. Now, this comes after an Indian Express report that said two election commissioners, Sukhbir Singh Sandhu and Vivek Joshi, raised formal objections at least 14 times in the last 10 months over certain decisions that were taken by the Election Commission. Their objections covered changes to the Form 6, to centralization of voter data, software modules that were developed without their approval, and restrictions on the electoral registration officers. Now, this report created a massive furor among the opposition, which hit out at the Election Commission. Congress MP Rahul Gandhi questioned the Election Commission over this, saying that vote chori is a crime against people, talking of treason as well. The report triggered a sharp reaction with the Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav seeking intervention of the Supreme Court in the matter. The Trinamool Congress even saying that the chief election commissioner Gyanesh Kumar should be removed.
3: मैं इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन के ऑफिसर्स को साफ कह रहा हूँ, आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, ये ट्रीजन है, देश के खिलाफ है, ये मत भूलिए। टाइम आएगा हम आपको पकड़ेंगे, बचने वाले नहीं हो।
4: Election commissioners themselves have highlighted some of the issues to Gyanesh Kumarji. So I think this is an extremely serious issue for our democracy. Because if there are no elections, then where is democracy? And if the elections are unfair and they are being rigged in any manner, and the election commission is assisting in that, and if the election commissioner himself is not only aware of it, but he is allowing it to happen, then it is a very, very serious assault on democracy.
5: 10 mahine mein election commissioner aur election ki jiski sabse badi manyata hai, hum aur aap sochte hain ki wo nishpaksh hai, nishpaksh institution se ye ummeed karte hain ki democracy ko aur strong karenge, democracy ko aur majboot karenge. लेकिन जब वहीं पर इस तरह का व्यवहार हो रहा हो कि 14 बार 10 महीने में कई उसके जो अधिकारी थे उन्होंने अपना नोट लिखा है, तो आप कल्पना कर सकते हैं इलेक्शन कमीशन किसके बिहाफ पे इस तरह का व्यवहार कर रहे थे. ये हमारे लोकतंत्र के लिए घातक है.
6: বাংলায় 30 লক্ষ লোককে ভোট দিতে দেওয়া হয়। আজকে সুপ্রিম কোর্টের যে বেঞ্চ ছিল সেখানেও আপনারা দেখেছেন যে বিচারপতিদের ওপিনিয়ন ডিভাইডেড, লার্জার বেঞ্চ কনস্টিটিউট করার জন্য বলা হয়েছে। গণেশ কুমার বিরুদ্ধে এলওসি ইস্যু করা উচিত। অনেকের চিন্তা ছিল আমি বাইরে যাব ফিরবো কি না, আমি ফিরে এলাম, আমি কলকাতায়। গণেশ কুমারের বিরুদ্ধে এলওসি ইস্যু করে যাতে দেশ থেকে পালাতে না পারে তার ব্যবস্থা করা উচিত।
7: শোনা করতে থেকে मोदी जी और अमित शाह वोटों की चोरी करके एक के बाद एक चुनाव जीतते जा रहे हैं. ये लोग चुनावों की चोरी कर रहे हैं, वोटों की चोरी कर रहे हैं, और बहुत बड़ा वोटों का घोटाला करके ये चुनाव जीतते जा रहे हैं. और इन वोटों की चोरी में इनके जो सरगना है मोदी जी के और अमित शाह के, वो है ज्ञानेश कुमार. और आज हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मांग करते हैं कि ज्ञानेश कुमार को गिरफ्तार किया जाए और उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाए. और पिछले कुछ सालों में जितने चुनाव हुए हैं, दिल्ली का, महाराष्ट्र का, बिहार का, वेस्ट बंगाल का, हरियाणा का, मध्य प्रदेश का, ये सारे चुनाव कैंसिल करके दोबारा कराए.
8: आज तक तो सिर्फ हम बोल रहे थे, मतलब विपक्ष, लेकिन आज पहली बार, शायद देश के इतिहास में ऐसे पहली बार हुआ होगा कि तीन आयुक्त होते हैं इस चुनाव आयोग में, और जो दो आयुक्त हैं विवेक जोशी और सुखबीर सिंह संधू, इन्होंने अब कैबिनेट सेक्रेटरी के पास एक लेटर देकर कंप्लेंट दी है कि चुनाव आयोग में ज्ञानेश कुमार की मनमानी चल रही है। तो ये बहुत ही गंभीर मामला है और प्रजातंत्र मारा जा रहा है। और जैसे मैंने कहा कि जैसे गैंग होती है ना, जो पार्टी तोड़ती है, पार्टी की चोरी करती है और प्रजातंत्र का खून करती है, हत्या करती है, तो वो उस गैंग का पर्दाफाश इन दोनों ने किया।
9: दैट इज वेरी शॉकिंग, मुझे आश्चर्य लग रहा है। देखो, इलेक्शन कमीशन का उद्धव जी के पार्टी ने भी झेला है, हमने भी झेला है, तो मुझे आश्चर्य नहीं लग रहा है, लेकिन दुख हो रहा है कि जिस सशक्त लोकतंत्र के लिए महात्मा गांधी जी ने इतना बड़ा योगदान किया, स्वातंत्र्य की इतनी बड़ी लड़ाई इस देश ने खड़ी की, हर घर में एक आदमी तो था जो लड़ रहा था कि आप और मैं सांस ले सके। उसके बाद आई भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हम सबको अधिकार दिए, हर एक को, आपको एक वोट, मुझे एक वोट, आपके कैमरामैन को एक वोट, प्रधानमंत्री जी को भी एक वोट। ये समता की जो भाषा हुई उस संविधान ने हमें दी और हमें कॉन्फिडेंस आया कि ये देश आगे बढ़ेगा। जरूर हमारे मतभेद हो, लेकिन क्या है कि पास होने में मजा कब है, जब मेहनत करके पास करें, कॉपी करके पास करने में क्या मजा।
10: So big, big, big, but let me tell you, 5 months ago, more than 60 Rajya Sabha members of parliament, when only 50 were needed, 60, wrote to the chairman of the Rajya Sabha, moving a motion to remove the chief election commissioner, Ganesh Kumar. That was 5 months ago. Now today, after this big news break that two election commissioners objected to many of the CEC's actions, it's time to bring out the Rajya Sabha motion to impeach the CEC and save democracy.
11: नहीं, देखिए, एक ऐसी स्टोरी आई है जिसके बारे में लोगों को शक था। मैं कई दफा मिला हूँ, पिटिशनर भी हूँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, मैंने उन दोनों की बॉडी लैंग्वेज भी देखी थी तमाम मीटिंग्स में। एक व्यक्ति ज्ञानेश जी जिनका व्यवहार, और इसमें तमाम वो बातें आई हैं कि 10 महीने के अंदर 14 बार ऑन रिकॉर्ड ऑब्जेक्शंस रेज किए गए। क्योंकि देखिए, वोटर लिस्ट सबसे सैक्रोसैंक चीज है, अगर डिस्क्रिशन यू रीड एज मन मर्जी, कम वाट में मैं ये करूंगा, और दिस पर्सन मस्ट लीव हिज ऑफिस पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन।
12: मिशन अस सच नाउ इन आवर कंट्री देयर इज ओनली ज्ञानेश कुमार द ऑटोक्रेट who is controlling the entire election process at the beck and call of Mr. Modi and Mr. Amit Shah. The commission has become redundant because two members of the commission has been registering their opposition, dissent over many of the decisions, controversial decisions that has been taken by Ganesh Kumar. Last 10 months, 14 times formally they objected to many of the aspects of SIR, mass deletion, addition, Form 6, all sorts of humbug that is happening in this country in the form of SIR. My demand is that Ganesh Kumar should be removed lock, stock and barrel.
13: If it continues like this, if we do not have people like the two election commissioners, I don't want to take their name at this point of time, I don't know what trouble they are going to go. Unko ED ke chhape padenge, ab income tax ke chhape padenge, unke saath kya hoga. But if we continue like this, I mean, there will be a time when we are going to resemble a banana republic, there will be no democracy.
14: BJP government is playing a game with this SIR. So they want to remove the Muslims from this country. That is their motive. They want to make it a Hindu country, which is impossible because as per law, people have registered as voters and living here for quite a long time and they have to be allowed to live. The government cannot, by way of SIR, cannot remove their names from voters list. The funniest thing is that former Vice President, former Home Minister LK Advani, all these names they have sent letters.
2: All right, so the entire controversy over SIR and this dissent within the Election Commission growing bigger and bigger. And now Mamata Banerjee, former Chief Minister of West Bengal, has also hit out over this. In fact, she has demanded that Gyanesh Kumar be arrested, and she demanded a repoll in certain in West Bengal as well. This is after the report in Indian Express that claimed that two of the election commissioners did not agree with certain decisions, that there were dissent notes 14 times in the last 10 months. The BJP, however, hitting back.

0: no concrete evidence of abetment to suicide. As per sources, CCTV shows Sahil engaging in cheating. Professor Dula asking him to step out of the class as well. And these is exactly what the CCTV has shown so far, what exactly happened in the exam hall.
1: जिसको जातिवाचक स्वीकार कर रहे थे, ऊपर के जाति का है, ये करे वाला है, सब उसको टॉर्चर करके और उसका उसको उसकी आत्महत्या नहीं है, वो हुशियार तो हुशियार विद्यार्थी होता। हाँ, आप उसका ऑल इंडिया रैंक देखिए, उसके वो ये कुछ भी गलत आरोप करेंगे, वो बोलेंगे कि उधर का चीटिंग करके वो एडवांस क्रैक करके आया है, उसको अरेस्ट करिए, यही मेरी विनती।
2: मेरे बेटे को न्याय दीजिए, उस पर जो अत्याचार हुआ है उसके लिए न्याय दीजिए, और IIT का जो बैकग्राउंड है वो चेक कीजिए। दलित बच्चों को क्यों, वही क्यों सुसाइड कर रहे हैं? आपका भी काम है, आप भी नागरिक है समाज के, यू आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल दिस पर। आपके भी बच्चे जाते हैं, जब अच्छे प्रशासन में जाते हैं ना, वो सभी प्रशासन में ऐसा ही चलता है, लेकिन माँ बाप का काम क्या है, चलता है। हमने उसे मेंटली सपोर्ट किया, कि तुम्हारा फ्यूचर बहुत अच्छा है बेटा, थोड़ा सहन कर। वो हमारी गलती हो गई, अगर हम उस दिन उसको लेके गए थे ना, मेरा बच्चा आज जिंदा होता।
3: जो भी किया, लाइक कॉपी करते हुए पकड़ा गया, फिर सुसाइड कर लिया। कॉपी करना इज़ डिफरेंट, बट सुसाइड करना इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग। तो उसके लिए दुख तो है, सब बच्चों के अंदर सिंपथी है साहिल की, होनी भी चाहिए। पर फिर उसके बाद जो प्रोटेस्ट हो रहा है, उसमें डिमांड्स जो बच्चे रख रहे हैं, वो डिमांड्स भी काफ़ी हद तक सही हैं, बहुत सारी सही डिमांड्स हैं। पर फिर जो केस लगाया गया हेडुल्ला सर के ऊपर, वो कम्प्लीटली बेसलेस है मेरे हिसाब से। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन IIT बॉम्बे में नहीं होता है, जितना मैंने जाना है अभी तक। मेरे साथ भी नहीं हुआ, मेरे किसी दोस्त के साथ भी कभी नहीं हुआ। मैं भी पहले प्रोटेस्ट में आया था, पहले दिन जब प्रोटेस्ट हो रहा था, इवेंचुअली मेरे पता लगा ये इतना सही नहीं है इनका पॉइंट। ये लाइक SC ST एक्ट जो लगा रहे हैं बिल्कुल सही नहीं है, उसका गलत यूज़ करा जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के एक्ट का हमारे।
4: मेनली आपको पता है मिड सेमेस्टर एग्जाम चल रहा था, ही वॉज कॉट कॉपी करते हुए पकड़ा गया था, मोबाइल अंदर लेकर के चला गया था। सो जो प्रोफेसर ने कुछ बोला होगा उसके अकॉर्डिंग ही डिड सुसाइड। यहाँ पर IIT बॉम्बे किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है, मतलब जो भी प्रोफेसर्स हैं, अगर आपको मार्क्स भी, अगर एग्जाम में मार्क्स दिए जाते हैं वो रिलेटिव होते हैं, जिसका जो परफॉर्मेंस होता है उसके अकॉर्डिंग होता है, अंदर किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है।
5: सेंसस नाउ इट वाज बीन ट्राइड टू मेक, वी ऑल अग्री ऑन वन थिंग कि चेंजेस नीड टू बी ब्रॉट टू हाउ स्टूडेंट वेलफेयर इज डन, एंड स्टूडेंट वेलनेस सेल में साइकियाट्रिस्ट और होने चाहिए, थिंग्स लाइक दैट। स्टूडेंट्स वॉइस शुड बी हर्ड व्हेन डिसीजंस आर मेड, बट आई थिंक स्टूडेंट्स डिसएग्री ऑन द ट्रीटमेंट जो प्रोफेसर दुल्ला को किया जा रहा है, एंड द कास्ट एंगल व्हिच इज बीइंग ब्रॉट इन, व्हिच इज नॉट द केस एट ऑल।
0: Let's now tell you what the parents are demanding and what the faculty, the IIT Bombay faculty, has been saying so far. It's quite on contrary. So the parents say Sahil should get justice. The faculty forum says that performed duty as per IIT guidelines. That's what Professor Dula did. Parents say Sahil tortured because of his caste. And Sahil's father, while speaking to NDTV yesterday, also said that he spoke with Sahil on September 13th, and he said that there were some caste slurs passed on to him. But the faculty forum says that the allegations without credible evidence, because there's been no record by Sahil in the STSC cell of IIT Bombay as well. Parents again say want immediate arrest of Professor Dula. That's why they're sitting down on a hunger strike. Faculty forum says students not justifying academic misconduct. Parents are now also saying that IIT director and Professor Dula, all of them tortured Sahil because of caste. Faculty forum says not presuming Professor Dula's guilt, and so far there has been no evidence found against all these allegations made by Sahil's parents. Parents again say IIT conduct with Dalit kids should be probed. Faculty forum, loss of Sahil should not become a political platform at this point of time, and there cannot be any caste angle that can come to the surface. And well, yesterday Sahil's father spoke with NDTV, and he is demanding the arrest of Professor Dula. This is exactly what he said. Take a look.
6: हमसे बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद रविंद्र जी. सबसे पहले आपकी क्या मांग है, आपकी सबसे पहली क्या मांग है? अभी
7: मेरा बेटा IIT OIM में सेकंड ईयर में एनर्जी इंजीनियर करके पढ़ाई कर रहा था,

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: I would say that today all the opposition parties have fallen into the trap. The trap where they said that the election commissioner and this government was a dictatorial government. Rather, I would say that this is pure democracy.
1: This election commission must be arrested. He has no moral authority to continue. And BJP must see they cannot destruct our constitution. They cannot destruct demolition on democracy. They cannot construct only the atrocities. And they cannot depute their own ERO in the name of BJP IT team. Even counting machinery, the election machinery was being captured by the BJP IT team. What we said earlier, now it has been exposed. And that's why our All Indian Alliance, even I came to know, even Arvind Kejriwal, Rahul Gandhi and others, they also addressed the press conference. And we'll meet very soon.
2: 10 महीने में इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन की जिसकी सबसे बड़ी मान्यता है, हम और आप सोचते हैं कि वो निष्पक्ष है, निष्पक्ष इंस्टीट्यूशन से ही उम्मीद करते हैं कि डेमोक्रेसी को और स्ट्रांग करेंगे, डेमोक्रेसी को और मजबूत करेंगे. लेकिन जब वहीं पर इस तरह का व्यवहार हो रहा हो कि 14 बार 10 महीने में कई उसके जो अधिकारी थे उन्होंने अपना नोट लिखा है, तो आप कल्पना कर सकते हो इलेक्शन कमीशन किसके बिहाव पे इस तरह का व्यवहार कर रहे थे. ये हमारे लोकतंत्र के लिए घातक है.
3: बिहार का नतीजा हो या महाराष्ट्र का नतीजा हो, दिल्ली का हो, हरियाणा का हो या बंगाल का हो, यहां विपक्ष हारी नहीं है, बल्कि चुनाव आयोग के दुरुपयोग से बीजेपी को जिताने का काम इन राज्यों में जो है किया गया है. और बिहार और बंगाल में तो अवैध चुनाव हुआ है. हम मांग करते हैं कि बिहार और बंगाल में पुनः चुनाव कराया जाए. बिहार का चुनाव, बंगाल का चुनाव फर्जी था.
4: सुना करते थे कि मोदी जी और अमित शाह वोटों की चोरी करके एक के बाद एक चुनाव जीतते जा रहे हैं. ये लोग चुनावों की चोरी कर रहे हैं, वोटों की चोरी कर रहे हैं और बहुत बड़ा वोटों का घोटाला करके ये चुनाव जीतते जा रहे हैं. और इन वोटों की चोरी में इनके जो सरगना है मोदी जी के और अमित शाह के, वो हैं ज्ञानेश कुमार. और आज हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मांग करते हैं कि ज्ञानेश कुमार को गिरफ्तार किया जाए और उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाए. और पिछले कुछ सालों में जितने चुनाव हुए हैं, दिल्ली का, महाराष्ट्र का, बिहार का, वेस्ट बंगाल का, हरियाणा का, मध्य प्रदेश का, ये सारे चुनाव कैंसिल करके दोबारा कराए.
5: आज तक तो सिर्फ हम बोल रहे थे, मतलब विपक्ष, लेकिन आज पहली बार, शायद देश के इतिहास में ऐसे पहली बार हुआ होगा कि 3 आयुक्त होते हैं इस चुनाव आयोग में, और जो 2 आयुक्त हैं विवेक जोशी और सुखबीर सिंह संधू, इन्होंने अब कैबिनेट सेक्रेटरी के पास एक लेटर देकर कंप्लेंट दी है कि चुनाव आयोग में ज्ञानेश कुमार की मनमानी चल रही है. तो ये बहुत ही गंभीर मामला है और प्रजातंत्र मारा जा रहा है. और जैसे मैंने कहा कि जैसे गैंग होती है ना, जो पार्टी तोड़ती है, पार्टी की चोरी करती है और प्रजातंत्र का खून करती है, हत्या करती है, तो वो उस गैंग का पर्दाफाश इन दोनों ने किया है.
6: It continues like this. If we do not have people like the 2 election commissioners, I don't want to take their name at this point of time. I don't know what trouble they are going to go. Unko ED ke chhape padenge, ab income tax ke chhape padenge, unke saath kya hoga. But if we continue like this, I mean, there will be a time when we are going to resemble a banana republic. There will be no democracy.
7: Well, this comes after the Indian Express published an important report talking about a brewing discontent or dissent amongst election

0: of its decisions, including the SIR, were completely unanimous in nature, and that differing views during internal deliberations are just part of a normal process. But this controversy comes at a time when questions about the independence and credibility of the poll panel are already being debated. Now, the Congress and the BJP are also sparring over this, with the Congress party asking for the impeachment of Gyanesh Kumar, the chief election commissioner, and the BJP saying that it's the Congress party raising these allegations only because it has failed to win elections in recent times. Let's take a look at some reactions.
1: मैं इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन के ऑफिसर्स को साफ कह रहा हूँ, आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, ये ट्रीजन है, देश के खिलाफ है, ये मत भूलिए, टाइम आएगा हम आपको पकड़ेंगे, बचने वाले नहीं हो।
2: ये भयानक नहीं लगता आपको? आपने पीढ़ी दर पीढ़ी, आपने नहीं, माननीय मुख्य चुनाव आयुक्त ने, जो समझते हैं कि संविधान भी वो है, चुनाव आयोग भी वो एकल है, देश भी वो है, और वो सिर्फ एक व्यक्ति की बाहर से सुनते हैं, एक दो की भी नहीं। इस देश की हमने इस हालत पे ले आए, इस कगार पे ले आए इसको।
3: आई वुड से दैट टुडे ऑल द ऑपोजिशन पार्टीज हैव फॉलन इनटू द ट्रैप वेयर दे सेड दैट द इलेक्शन कमिश्नर एंड दिस गवर्नमेंट वॉज अ डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट, रादर आई वुड से दैट दिस इज प्योर डेमोक्रेसी।
4: This election commission must be arrested. He has no moral authority to continue. And BJP must see they cannot destruct our constitution. They cannot destruct demolition on democracy. They cannot construct only the atrocities. And they cannot depute their own ERO in the name of BJP IT team. Even counting machinery, the election machinery was being captured by the BJP IT team. What we said earlier, now it has been exposed. And that's why our All Indian Alliance, even I came to know, even Arvind Kejriwal, Rahul Gandhi and others, they also addressed the press conference. And we'll meeting very soon.
5: 10 महीने में इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन की जिसकी सबसे बड़ी मान्यता है, हम और आप सोचते हैं कि वो निष्पक्ष है, निष्पक्ष इंस्टीट्यूशन से ही उम्मीद करते हैं कि डेमोक्रेसी को और स्ट्रांग करेंगे, डेमोक्रेसी को और मजबूत करेंगे, लेकिन जब वहीं पर इस तरह का व्यवहार हो रहा हो कि 14 बार 10 महीने में कई उसके जो अधिकारी थे उन्होंने अपना नोट लिखा है, तो आप कल्पना कर सकते हो इलेक्शन कमीशन किसके बिहाव पे इस तरह का व्यवहार कर रहे थे। ये हमारे लोकतंत्र के लिए घातक है।
6: बिहार का नतीजा हो या महाराष्ट्र का नतीजा हो, दिल्ली का हो, हरियाणा का हो या बंगाल का हो, यहां विपक्ष हारी नहीं है, बल्कि चुनाव आयोग के दुरुपयोग से बीजेपी को जिताने का काम इन राज्यों में जो है किया गया है। और बिहार और बंगाल में तो अवैध चुनाव हुआ है। हम मांग करते हैं कि बिहार और बंगाल में पुनः चुनाव कराया जाए। बिहार का चुनाव, बंगाल का चुनाव फर्जी था।
7: सुना करते थे कि मोदी जी और अमित शाह वोटों की चोरी करके एक के बाद एक चुनाव जीतते जा रहे हैं। ये लोग चुनावों की चोरी कर रहे हैं, वोटों की चोरी कर रहे हैं और बहुत बड़ा वोटों का घोटाला करके ये चुनाव जीतते जा रहे हैं। और इन वोटों की चोरी में इनके जो सरगना है मोदी जी के और अमित शाह के, वो है ज्ञानेश कुमार। और आज हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मांग करते हैं कि ज्ञानेश कुमार को गिरफ्तार किया जाए और उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाए। और पिछले कुछ सालों में जितने चुनाव हुए हैं, दिल्ली का, महाराष्ट्र का, बिहार का, वेस्ट बंगाल का, हरियाणा का, मध्य प्रदेश का, ये सारे चुनाव कैंसिल करके दोबारा कराए।
8: आज तक तो सिर्फ हम बोल रहे थे, मतलब विपक्ष, लेकिन आज पहली बार, शायद देश के इतिहास में ऐसे पहली बार

0: Really, any street light can be seen. Here you can see Lotus Temple can also be seen from here, and which is barely 200 to 300 meter away from the iconic Lotus Temple, and it's also at a distance of not more than 1 kilometer from Nehru Place. So it's in the heart of the city where what we have seen that such incident had come to light, and it has raised questions on the law and order situation and the security and safety of women.
1: Meanwhile, Election Commission has issued statement after questions raised over its functioning and allegations of internal rifts. Now, in the statement, ECI said that differing views and observations are a normal part of deliberation in any institution, further saying that they are a part of the decision-making process before final decision is taken. This comes after an Indian Express report said that two election commissioners, Sukhbir Singh Sandhu and Vivek Joshi, raised formal objections at least 14 times in the last 10 months. The objections covered changes to Form 6, centralization of voter data, software modules developed without the approval, and restrictions on electoral registration officers as well. Meanwhile, Shiv Sena UBT MP Sanjay Raut has now stoked a row after his controversial comment on the parliament. Sanjay Raut hurled abuses against the parliament. He also said that there is no point speaking in parliament as BJP doesn't let parliament function. BJP has now slammed Sanjay Raut over his remark and said that this is an insult to the temple of democracy. BJP also said that public deserves better representation than such filthy mouths.
2: पार्लियामेंट में बात रखने से क्या होगा? पार्लियामेंट एक तो ये चलने नहीं देते, पार्लियामेंट ये लोगों की बन गई है, क्या करेंगे?
1: Meanwhile, Uttar Pradesh Minister O.P. Rajbhar has started a debate raking up the demand to split the state. UP Minister O.P. Rajbhar has now called the Uttar Pradesh to be divided into four states. That's Purvanchal, Madhyanchal, Bundelkhand and Harit Pradesh. Rajbhar has also linked the demand to the caste census, saying that the division of the state is inevitable. BJP leader Sanjeev Balyan has now backed the demand, arguing that smaller states could boost development and improve access to institutions like AIIMS and the High Court. But the Samajwadi Party has rejected the proposal. SP has questioned how many states would be created, arguing that smaller states could lose significance and that the government should first address corruption in the state as well.
3: ये तो तय है कि प्रदेश का बंटवारा एक दिन होना है। जब प्रदेश का बंटवारा होगा तो पूर्वांचल, मध्यांचल, बुंदेलखंड, हरित प्रदेश। तब पूर्वांचल में आप उठा के देखिएगा, जहां हम लोग बैठे हैं, अम्बेडकर नगर से शुरू करेंगे तो पूरी पूर्वांचल में सबसे ज़्यादा वोट राजभर जाति का है। तो इस नाते कोई भी पार्टी जो भी गठबंधन करेगा तो वो पहले ही वो तय होगा कि पूर्वांचल राज्य जिस दिन बनेगा उसका मुख्यमंत्री राजभर का बेटा होगा।
4: राजभर जी के मुंह में घी शक्कर, हम तो पहले से बात करते रहे। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है और उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश को बेहतर बनाने के लिए अगर अलग स्टेट बनते हैं तो बहुत खुशी की बात है। देखिए, हमारा एम्स कहाँ है? रायबरेली 700-750 किलोमीटर, एक एम्स गोरखपुर है, दोनों पास में है। शायद मैं और आप अगर बीमार जाते हैं उसमें कितनी अच्छी सोच थी कि हर प्रदेश में एक एम्स हो, लेकिन उसका फायदा नहीं मिल पाया। हमारा हाईकोर्ट कहाँ है? बहुत दूर, हम और आप न्याय के लिए नहीं जा सकते। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं कि जब केंद्र सरकार से कोई योजना बनती है तो कहते हैं हर प्रदेश को एक दे दो, तो सिक्किम को 15 लाख की आबादी को भी एक मिलती है, गोवा को 14 लाख की आबादी को भी एक मिलती है और उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी को भी एक मिलती है। तो अगर ऐसा हो जाए तो बहुत बेहतर रहेगा, प्रदेश का विकास होगा और पश्चिम उत्तर प्रदेश देश का सबसे समृद्ध और अच्छा प्रदेश बनेगा।
5: अच्छा, जब पूर्वांचल बनेगा तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी बनेगा, फिर दक्षिण भी, दक्षिण का भी बनेगा, बुंदेलखंड बनेगा, फिर रोहेलखंड बनेगा, रोहेलखंड बनेगा। पहले तो ये तो पहले ये तो विचार पहले करो, पूर्वांचल की बात तो तब करो पहले।

0: process before final decision is taken. This comes after an Indian Express report said that two election commissioners, Sukhbir Singh Sandhu and Vivek Joshi, raised formal objections at least 14 times in the last 10 months. The objections covered changes to Form 6, centralization of voter data, software modules developed without the approval, and restrictions on electoral registration officers as well. Meanwhile, Shiv Sena UBT MP Sanjay Raut has now stoked a row after his controversial comment on the parliament. Sanjay Raut hurled abuses against the parliament. He also said that there is no point speaking in parliament as BJP doesn't let parliament function. BJP has now slammed Sanjay Raut over his remark and said that this is an insult to the temple of democracy. BJP also said that public deserves better representation than such filthy mouths.
1: पार्लियामेंट में बात रखने से क्या होगा? पार्लियामेंट एक तो ये चलने नहीं देते, पार्लियामेंट ये लोगों की बन गई है, क्या करेंगे?
0: Meanwhile, Uttar Pradesh Minister O.P. Rajbhar has started a debate raking up the demand to split the state. UP Minister O.P. Rajbhar has now called the Uttar Pradesh to be divided into four states. That's Purvanchal, Madhyanchal, Bundelkhand and Harit Pradesh. Rajbhar has also linked the demand to the caste census, saying that the division of the state is inevitable. BJP leader Sanjeev Balyan has now backed the demand, arguing that smaller states could boost development and improve access to institutions like AIIMS and the High Court. But the Samajwadi Party has rejected the proposal. SP has questioned how many states would be created, arguing that smaller states could lose significance and that the government should first address corruption in the state as well.
2: देखिए जिस दिन ये तो तय है कि प्रदेश का बंटवारा एक दिन होना है। जब प्रदेश का बंटवारा होगा तो पूर्वांचल, मध्यांचल, बुंदेलखंड, हरित प्रदेश। तो पूर्वांचल में आप उठा के देखिएगा, जहां हम लोग बैठे हैं, अम्बेडकर नगर से शुरू करेंगे तो पूरे पूर्वांचल में सबसे ज़्यादा वोट राजभर जाति का है। तो इस नाते कोई भी पार्टी जो भी गठबंधन करेगा तो वे पहले ही वो तय होगा कि पूर्वांचल राज्य जिस दिन बनेगा उसका मुख्यमंत्री राजभर का बेटा होगा।
3: राजभर जी के मुँह में घी शक्कर, हम तो पहले से बात करते रहे। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है और उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश को बेहतर बनाने के लिए अगर अलग स्टेट बनते हैं तो बहुत खुशी की बात है। देखिए हमारा एम्स कहाँ है? रायबरेली 700-750 किलोमीटर, एक एम्स गोरखपुर है, दोनों पास में है। शायद मैं और आप अगर बीमार हो जाते एम्स में, कितनी अच्छी सोच थी कि हर प्रदेश में एक एम्स हो, लेकिन उसका फायदा नहीं मिल पाया। हमारा हाईकोर्ट कहाँ है? बहुत दूर, हम और आप न्याय के लिए नहीं जा सकते। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं कि जब केंद्र सरकार से कोई योजना बनती है तो कहते हैं घर प्रदेश को एक दे दो, तो सिक्किम को 15 लाख की आबादी को भी एक मिलती है, गोवा को 14 लाख की आबादी को भी एक मिलती है और उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी को भी एक मिलती है। तो अगर ऐसा हो जाए तो बहुत बेहतर रहेगा, प्रदेश का विकास होगा और पश्चिम उत्तर प्रदेश देश का सबसे समृद्ध और अच्छा प्रदेश बनेगा।
4: अच्छा, जब पूर्वांचल बनेगा तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी बनेगा, फिर दक्षिण भी, दक्षिण का भी बनेगा, बुंदेलखंड बनेगा, फिर रोहेलखंड बनेगा, रोहेलखंड बनेगा। पहले तो ये तो विचार पहले करो, पूर्वांचल की बात तो तब करो, पहले सब एक करो। कितने प्रदेश बनाओ, कितने प्रदेश बनाओ?
0: The Sabarimala Prasadam shortage has now turned into political row in Kerala. Pilgrims faced restrictions on the sale of Aravana, with each devotee allowed just one tin, while Appam sales were capped at 3 packets. The shortage followed the temporary shutdown of the Aravana plant for repair and renovation work. Well, the Keralam government has questioned the Devasam board over the crisis. The government has also indicated that accountability will be fixed and that it may approach the Keralam High Court against the officials. The Devaswam board, however, says that the repair work was aimed at preventing a bigger production crisis during the main